पीएफ दिवस मनाया जाता है, जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन के जन्म के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म वर्ष 1978 में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से हुआ था। इस क्रांतिकारी उपलब्धि ने प्रजनन चिकित्सा में एक नया अध्याय जोड़ा और गर्भधारण में कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को आशा की किरण दिखाई। आज का यह दिवस IVF दिवस, जो कि संतानहीन जो माता पिता होते हैं उनमें जागरूकता बढ़ाने, प्रजनन क्षमता से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा को बढ़ावा देने और जनता को प्रजनन उपचार विकल्पों के बारे में सूचित करने का एक अवसर है। इस अभूतपूर्व खोज ने प्रजनन क्षमता के उपचार में क्रांति ला दी और अनेक लोगों को गर्भधारण का अवसर प्रदान किया जो अन्यथा गर्भधारण करने में असमर्थ होते हैं। तब से IVF तकनीक में निरंतर प्रगति हुई है, सफलता दर में वृद्धि हुई है, उपचार के प्रोटोकॉल अधिक परिष्कृत हुए हैं और रोगी देखभाल में सुधार हुआ है। इतनी आम समस्याओं होने के बावजूद या फिर गलत जानकारी के कारण कई लोग गर्भधारण करने में अपनी कठिनाइयों के बारे में चुप रहते हैं। विश्व IVF दिवस का उद्देश्य है इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना और इसके बारे में व्यापक समझ विकसित करना है। यह सच है कि जो संतानहीन होते हैं, जिन माता पिता के संतान नहीं होती हैं, उनका जो जीवन होता है भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा होता है। यह दिन गर्भधारण करने की कोशिश के मनोवैज्ञानिक परिणामों को पहचानता है और मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। प्रजनन उपचार में क्रांति लाने और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों को बेहतर बनाने वाली वैज्ञानिक सफलताओं को विश्व IVF दिवस पर याद किया जाता है। विश्व IVF दिवस 2026 के समारोह में दुनिया भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रजनन विशेषज्ञों, वकालत समूहों और रोगी समुदायों के शामिल होने की जो इसमें शामिल होते हैं और जन जागरूकता अभियान, प्रजनन शिक्षा कार्यक्रम, रोगी सहायता पहल, अनुसंधान और नवाचार पर चर्चा, इसमें जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और यह जो आयोजन होता है इसका उद्देश्य आशा जगाना, कलंक को तोड़ना और प्रजनन क्षमता और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से सूचित बातचीत को बढ़ावा देना होता है।

न्याय नहीं है कागज का कोई टुकड़ा, न्याय तो है जीवन का सच खरा। जब जब कोई निर्दोष यहाँ है डरा, न्याय का सूरज बन के है उभरा। भेदभाव की दीवारें सब तोड़ दो, अन्याय से पुराना नाता छोड़ दो। समानता का यह संदेश है फैलाना, हर पीड़ित को उसका अधिकार दिलाना। कानून की यह राह चले निष्पक्ष सदा, ऊंच नीच का भेद न माने कभी कदर। मानवता का दीप जलाए रखना, हर दिल में विश्वास बसाए रखना। जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2025 में प्रस्ताव अपनाकर घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। यदि आपका तात्पर्य विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय है, तो वो हम 17 जुलाई से ही यह वैश्विक स्तर पर न्याय और मानवाधिकारों को समर्पित करता है। इस दिन की जो घोषणा है, अगर बात करें तो 25 जुलाई वर्ष 2026 को नाउरू घोषणा पत्र को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यह स्वीकार करता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली के लिए न्यायाधीशों और न्यायपालिका का मानसिक और शारीरिक कल्याण अत्यंत आवश्यक है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर न्यायिक अधिकारों के लिए सहायक और अनुकूल कार्य वातावरण बनाने पर जोर दिया जाता है। न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारों जैसे कि न्यायालय आयुक्त और मध्यस्थों का एक गहरा दायित्व होता है कानून के शासन को बनाए रखना, अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि न्याय निष्पक्ष और न्याय संगत हो। और इसके साथ ही जो कि लंबे कार्य समय और एकांत और निर्णय लेने का भावनात्मक बोझ उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे अंततः न्याय की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
4: क्या कहती हो शामू की माँ?
3: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
4: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: मुश्किलें जो राहों में आई तुझको ना वो डराए, तो रख हौसला मन में अपने, पूरे होंगे सब सपने। हाथों की इन लकीरों से आगे मेहनत का बल तू भागे, पसीना जो तू बहाएगा वही रास्ता बनाएगा। रात की ये काली छाया है बस एक माया, सूरज फिर से निकलेगा, अंधियारा टल के निकलेगा। उठ बांध ले अब तू कमर, ना मान कभी तू डर, जीत तेरी ही होगी यहाँ, चल दे तू लेकर निशान।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 8:15 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
5: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
8: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुए।
5: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
9: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है।

0: सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। जंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex, approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified four positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
8: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए. Thanks to everybody. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
7: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Delhi Police has constituted a special task force, STF, to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Our correspondent has the details.
9: Delhi Police in a statement said that the task force will be responsible for conducting prompt, professional and comprehensive investigations into offences pertaining to public examinations conducted by different authorities. These include Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards, Institute of Banking Personnel Selection, National Testing Agency, as well as ministries or departments of the central government and their attached and subordinate offices for recruitment of staff. In addition to investigation, the special task force will also ensure effective coordination with the prosecuting agencies to facilitate expedition prosecution to ensure that trials in such cases are conducted on a day-to-day basis. Vedanath Kumar, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system.
10: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
7: Delhi Metro Rail Corporation has informed that 18 stations have been closed from 7:30 this morning till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Rajiv Chowk, Patel Chowk,

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए

0: अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गायक कलाकार कविता को।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र। लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गायक कलाकार कविता वैसाथियों को।

इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के गायक कलाकार थे कविता और साथी मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सब रस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं निगाहें फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज़ ने, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

किशोर कुमार की आवाज़ में याराना फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत को लिखा है अनजान ने और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

याराना फिल्म से अभी आपने गीत सुना, पुकार फिल्म से गीत हैं। इस गीत को आवाज़ें दी हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और स्वर्णलता ने। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है या रहमान ने, संगीतबद्ध किया है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आशा भोसले की आवाज़ में तक्षक फिल्म से गीत है। सुखवेंद्र सिंह और तेजपाल कौर ने इस गीत को लिखा है या रहमान ने संगीतबद्ध किया है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में संजू फिल्म से गीत हैं। शेखर अस्तित्व ने इस गीत को लिखा है, विक्रम ने संगीतबद्ध किया है।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की युगल स्वर में राम लखन फिल्म से गीत हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आदमी खिलौना है फिल्म से गीत है। समीर ने इस गीत को लिखा है और नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया है।

कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में खुदा गवाह फिल्म से गीत है, आनंद बख्शी की शब्द रचना है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और साधना सरगम ने। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण ने धुन तैयार की है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: श्री मोदी के वीडियो को अब तक 30,30,00,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि CJP ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के अलावा कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 इच्छाएं थी।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट पेपर परीक्षा लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में 5वें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारतीय जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु की खबर है। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Prime Minister Narendra Modi thanked youngsters and everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
2: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
4: That video also created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now, surpassing earlier record of 300 million views. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting, they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system.

0: मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ जोन AIR पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:40 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है पसंद अपनी अपनी कार्यक्रम।
1: पसंद अपनी अपनी कार्यक्रम सुनने वाले सारे भण भाइया ने आनंद भाई की राम राम। भाइयो, आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज़ाद सिंह और साथिया की गाई हुई रागनी के साथ। पसंद करने वाले श्रोता रहोगे भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, कुणाल मेहरा और किरण मेहरा, कपिल मेहरा। अली काडब वाली से बसंत सिंह, चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। इसी रागनी ने पसंद करे हैं खेड़ी चौपटा जिला हिसार से पंडित सत्ता रेड्डी, राजा राम पुनिया, रामेश शर्मा, किताब सिंह शोरान। गांव पांडु पिंडारा जिला जींद से श्री बादल सिंह गिल, कमलेश गिल, टीनू प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल। लोको कॉलोनी लोहरू से श्रोता हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार और श्रीमती लक्ष्मी देवी। गांव सच्चा खेड़ा से ड्राइवर बलबीर, सिपाही सुरेश, हवलदार वेद बिहारी। और इसी रागनी ने पसंद करे हैं गाँव खेड़ी तलवान से राजेंद्र, मास्टर प्रकाश अंभवता। तो सुने भाई अपनी ये पसंद।

ये सुनी भैया नाजाद सिंह की गायु रागनी। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बहन सुनवाऊंगे रामफल शर्मा और साथियाँ गायु रागनी। पसंद करने वाले श्रोता रहोंगे गांव गैसी बागपत यूपी से चौधरी काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल दलाल, दयानंद धर्मवीर, नितिन, अर्पित, प्रियांशी, ओमपाल, सन्नी सहरावत, निमेश नैन, अनुज नैन। ग्राम कस्बा छपरौली बागपत उत्तर प्रदेश है जसवंत सिंह खोखर, राम कुमार खोखर, अनिल खोखर, विनीत खोखर, सचिन, मोक्ष, तनुज खोखर। गांव ढिकाणा बागपत से जयपाल, जयकुमार, रोहित चौधरी, वास से राजू अग्रवाल, केशव व विवेक, प्रयाग, प्रियांशी। गांव बिरौली जींद से सुरेश सांगवान, सचिन सांगवान, अंकित सांगवान। गांव बाना ब्रह्मणा से मेघराज शर्मा और इसी रागने ने पसंद करे हैं। गांव नीमड़ी से श्रोता हैं श्री जगदीश सिंह, बलवंत सिंह, अतर सिंह, सुरेश, कृष्ण कुमार, धर्मा नंबरदार, घोगड़ी देवी, जागेराम, सज्जन सिंह, चरण सिंह, सुभाष चंद्र नंबरदार, बौंद से हैं घिस्सा व नौरंग। गांव द्वारका से हैं शमशेर सिंह। तो भाई सुने अपनी ये पसंद है।

फिर विष्णु जी भी सत्यलोक में सुबह और शाम डरे उस मान संग से लक्ष्मी।

0: ये सुनी बयान रामफल शर्मा और साथियों की गाई, रागनी कार्यक्रम की अगली रागनी बयान सुनाऊंगे बाली शर्मा और साथियों की गाई हुई। पसंद करने वाले श्रोता रहोगे आदर्श गांव बलियाली से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी बंसल, कमल कुमार, गर्वीश बंसल। गांव झोजूकला से श्रोता हैं विनोद कुमार प्रजापत, अंकित, प्रिया, वंशु, तनीषा, दीपक, सोनू। अगले श्रोता हैं लाल मस्जिद भिवानी से प्रवीण पोपली, अमित पोपली, बेबी ज्योति, तुलसी देवी, शीला देवी, गीता देवी, दीक्षा रानी, बेबी सोनी। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, सुनीता ढिल्लो, संदीप गुगलानी। गांव हिरण छप्पर से जयपाल धीमान, जयपाल विश्वकुमार, विनोद कुमार और भुवंश धीमान। जिला जींद में गांव देवरड़ से श्री राम चहल, वीर सिंह, कमलेश फौजी, हरिचंदर विरागी, पंडित मां सिंह, पंडित जगदीश, मास्टर रघुवीर शर्मा, मांगेराम शर्मा। गांव सच्चा खेड़ा से अवलदार बेद बिहारी। तो सुने भाई अपनी ये रागनी।
1: हेरे की सतरिया ते आया

कार्य में सब जानू के थारे घर में कमी नहीं से धन में आपस में करें शर्म सगिया।

देखिए तेरी माता मेरी बाण सगिया में एक उदर में लोटी चार साल का फर्क उम्र में वा बड़ी में छोटी तेरा देखो दोष नहीं मेरी गलती होगी मोटी।

ने बेरिए ने कौन बुला चाहे खड़िया गाम के गोरे अपने बिन को बांध ना सकता मो ममता के डोरे देखिए चोरी ठगी बदमाशी ये रिहों से योरे।

सभी सदस्य। जिला जींद में गांव देवरड़ से श्री राम चहल, वीर सिंह चहल, मास्टर ओम बलवान, धर्मचंद प्रजापत, दरियामू राम बिरागी, बालाराम प्रजापत, मास्टर रघुवीर शर्मा, पंडित मोयाम लाल, श्री राम

0: इसी रागनी के साथ भैया कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त, चल लेंगे सारे बण भैया ने, राम राम।
1: आपने सुना लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए

इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा

0: जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस विशेष कार्यबल द्वारा अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ की भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल गुरुग्राम में विध्वंस व अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरा निस्तारण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और अधिक बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हरियाणा ने क्षय रोग के खिलाफ अभियान में टीबी मुक्त भारत ऐप पर 35,229 पंजीकरण के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही राज्य में टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टीपीटी का कवरेज बढ़कर 49%, एनएएटी आधारित मॉलिक्यूलर जांच का कवरेज 67% तथा पात्र मरीजों के लिए डिफरेंशिएटेड टीबी केयर का कवरेज 71% तक पहुंच गया है। ये जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की बैठक में दी गई। हरियाणा साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है। साइबर ठगी के पीड़ितों को धन वापसी तथा अंतर्राज्यीय तालमेल के मामलों में राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर चारूबाली ने बताया कि 22 जुलाई 2026 तक प्राप्त 14,731 साइबर अपराध मामलों में हरियाणा ने 38% मामलों में पीड़ितों को धन वापसी के आदेश जारी किए, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 8% है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 से 30 तारीख तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और 27 तारीख को कुछ जगहों पर और कल इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 28 और 29 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, आइए फिल्मी गाने सुनते हैं।

फांसी फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में गाया हुआ आपको हमने सुनवाया। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गीत। इंदिवर का रचा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें।

ये आपने सुना पारस फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं परिवार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें हैं, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

परिवार फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थीं, गुलशन बावरा के बोल थे, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपके विचारों का, सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता

मंच में स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 01262-255-446, 255-447 और 255-448। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव प्रसारित होता है। इस बार का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:30 बजे। अगर कोई महत्वपूर्ण डिले ना हुआ तो पिछली बार से ऐसा हो रहा है कि इस कार्यक्रम का स्थगन हो जाता है किसी महत्वपूर्ण रिले के कारण। फिलहाल आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे, ऐसी सूचना है। और ये थी जानकारी आपके लिए। बढ़ते हैं आगे और मंजिल फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है, गीत योगेश का, संगीत आर डी बर्मन का।

0: ये आपने सुना मंजिल फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें आपने सुनी, योगेश के बोल थे, संगीत था आरडी बर्मन का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: ये था लावा फिल्म का गीत, आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

जुल्म की पुकार फिल्म का ये गीत था। वर्मा मलिक का रचा हुआ, सोनी कोमी का संगीत था, मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ें आपने सुनी। अगला गीत आवाम फिल्म से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले गा रहे हैं, हसन कमाल के बोल हैं, संगीत है रबी का।

आवाम फिल्म का गीत था ये, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत हसन कमाल का, संगीत था रवि का। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं? हमारे फ़ोन इन आधारित श्रोता मंच कार्यक्रम में फ़ोन करके बताइए। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 01262-255-446, 255-447 और 255-448। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्रों से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 यानी 7:30 से लेकर 8 तक प्रसारित किया जाता है लाइव। तो ये कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा। और इस बार का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल ही शाम 7:30 से लेकर 8 तक। ये था आपसे अनुरोध और जानकारी। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और आशा भोसले का गाया।

0: मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्य रात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस

0: घोषणा को अमल में लाते हुए चार प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत

0: की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: On the occasion of Fibroids Awareness Month, we are spreading awareness about heavy menstrual bleeding associated with uterine fibroids. So today we have Dr. Pallavi Mittal from Rohtak. Doctor, what symptoms suggest that heavy menstrual bleeding may be caused by fibroids?
3: So basically, the heavy menstrual bleeding can have a lot of causes. But when it is due to fibroids, the patient can have pain in abdomen and will have clots in it, you know? I mean, they're like solid blood parts in the menstrual blood, and when you pass clots during periods, there is a major sign that it could be fibroids. And of course, there can be, the patient can have spotting in between two periods also. So if the patient has all these kind of symptoms, then they should think that they might have fibroids. In between two periods, some patients can experience a little bit of spotting, like they'll see a spot of blood on their underwear.

0: if they have that kind of spotting, then they can have fibroid or fibroid polyp.
1: Issued in public interest by Inka Life Sciences, a division of Sun Pharma.
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है. घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स. आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.
5: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइया ने आनंद भाई की राम राम. और फिलहाल भाइयों, मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम में आज भी काफ़ी जगह तब्दीली है, लेकिन जो पूरा पर्याप्त अगर मौसम की बात कर रहे हैं कि पूरा हरियाणा प्रदेश में जो अलग बग अपना बारिश का माहौल चाहिए था हमने, वह पर्याप्त बारिश नहीं हुई है. क्योंकि कहीं कहीं पर थोड़ा हाथ तेज बारिश है, कहीं कहीं पर बिल्कुल लड़की. और ये देखें कि जड़ें भी खास तौर पर धान वाली बेल्ट है, कुछ बरानी इलाके हैं उसके हिसाब से हैं. जिन भैया ने कुछ बरानी इलाके की बात करी जाए तो चाहे भाई अगर चाल की कुछ न्यूमान की चालना, हाँ कि अपना चाहे वो बाजरे की फसल लगानी है, कितने गवार की लगानी है या फिर कोई हरे चारा वाली फसलें लगानी है, जड़े जड़े भी कोई एक आधा भाई कितने न कितने बादल का झोंक के कारण कोई ना कोई एरियम ठीक ठाक हो रही हो. लेकिन अगर पर्याप्त बरसात की बात करी जाए तो सही मानसून अपने जो धान वाली फसल पालनी हो किसान भैया ने तो इबन नहीं हुई है. आस यह है कि भाई एक ठीक सी बरसात हो जाए तो भाई चाहे वो धान फसल की हो चाहे वो बरानी इलाके में हो, ठीक ठाक किसान भैया काम चल जाए है. इस तरीके से चाहे वो धान वाली बेल्ट की बात करा, हाँ चलो वहाँ तो ये मानना है कि भाई ट्यूबवेल के पानी है, पर्याप्त लाइट की सुविधा है. लेकिन अगर ज़्यादा दोहन के कारण ये मानना है कि हम साल दर साल भाई चौवा नीचे तो देखो जा वही है, अगर बरसात हो जाए तो ठीक ठाक काम भी चल जाए है. और काम चालन के साथ साथ भी किसान भाई का जो खर्चा है वो काफ़ी अति, चाहे वो डीजल की बात कर रहे हैं चाहे कि बिजली खपत की बात कर रहे हैं, वो घट गया है. तो इस हिसाब से अपने दिनचर्या के काम में भाई अपना एक तो चाहे वो हमने धान की फसल लगा रखी है या फिर कितने बरानी इलाका में भाई अपने अपने माना बाजरा ला रखा है और अपने कुछ समतल वाले इलाके हैं भाई, बहुत से भैया पे कपास है, कितने भाई अरहर की बिजाई भी कर रखी है, अरहर भी खड़ी है, साल भर की फसल अपनी गन्ना है भाई वो भी खड़िया है. तो चाहे वो कपास की बात हो भाई, कपास में भी निरंतर अपना यो देखे हैं कि बढ़िया पैदावार लेने खातर भाई टेम सर अपना देखो डेढ़ दो महीने में पानी देवा तो ये थोड़ा चूड़ा नीचे मानी जा है कि अपना इसकी जो जड़ हो छड़ी नीचे चली जा है. और ठीक पैदावार जब भी होगी, जब निराई गुड़ाई होगी, कुछ लक्षण किसान भाई खेत में जाओ हैं पहचाने हैं, कोई अपना ये देखें भाई कीट पतंगिया का नुकसान ना हो इसमें. और खरपतवार का सबसे मेन समस्या रहा चाहे वो कोई सी फसल हम लगा रहे हैं, हर एक फसल में खरपतवार का बहुत मुख्य प्रभाव रहा है कि वह प्रमुख जो फसल है उसने दाब ले है. और फिर जो भी हम खाद कूड़ा डालना है इसमें कोई भी खपात कर रहा है तो भाई उसमें जाके फिर वह खरपतवार का इलाका है. तो भाई अपना चाहे कस्सी कसोला खुरपी जो भी हम अपनाओ हैं अंतर भाई निराई गुड़ाई का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है हर एक फसल में. इस तरीके से चाहे वह अरहर की फसल हो भाई, अरहर भी काफ़ी इलाके में होने तो रहेगी है, जड़े भी ये देखा हाँ कि थोड़ा बहुत ट्यूबवेल का पानी ख़राब है या फिर थोड़ी ही बहुत ज़मीन में अपने की तरह ही कलर की भूमि है, उड़े इब अरहर काफ़ी जगह होने तो रहेगी है. लेकिन जड़े भी है भाई खास तौर पर थोड़ा ध्यान रखा, क्योंकि अरहर के जो भाव हों काफ़ी ऊंचे हों, काफ़ी ऊंचा होने के कारण भाई खबात थोड़ी अमनी ठीक कर ले किसान भाई इसमें खरपतवार निकाल दे है. थोड़ा टेम सर अपने अगर देसी खादा की बजाय पहले हो जाए, इसमें देसी खाद पहले हम डाल दें हैं कोई 5-7 ट्रोली.

0: पुरानी वाली सड़ी खाद तो ठीक पैदावार हर एक फसल तो ले सके किसान भाई। इसी तरीके से चाहे वो गन्ना फसल हो, गन्ना भी साल भर की फसल है भाई, इसमें ही बहुत से देखे जाएँ कि बवेरू का काम है कि भाई अपनी मोटी फसल किसान भाई ले हुए हैं। मोटी फसल में ये हेपेटी जिस नाम बोलते हैं वो इसमें टेढ़ी खतरा की मात्रा की जरूरत पड़े है। और अब तो बरसात का टाइम चल रहा है चौमासे में भाई, इसमें चौमासे तो पहले पहले अगर भाइयों की फसल बढ़िया खड़ी है तो देखो बंधवाण का काम बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर बंधवाऊंगी नहीं तो या फिर गिर जाएगी, और गिरण में भाई चूहे जो है इसने बिल्कुल नुकसान करके आद बना दी है अपनी फसल ने, तो यो जरूर ध्यान रखें। और जिनकी भाइयों की ठाडी फसल है भाई बंधाई लगभग पहले तो भाई तीन तीन होया कर दी, और आज ये देखे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अगर देसी जो खाद है इसका इस्तेमाल हो जाए साल भर वाली फसल में तो सबसे बढ़िया रहा है। गन्ना फसल के साथ साथ बहुत से भाई इसमें कुछ इंटरक्रॉपिंग कुछ अन्य फसलें हैं वह भी ले ले हैं, और इसमें फिर पूरी ये देखें पैदाइश में कोई कमी नहीं आती है, चाहे वो हम थोड़ा फासला कूडा का ज़्यादा रख लें अंत फसला का लेने की हम कोशिश करें, क्योंकि आज की जो सघन खेती है उसमें बहुत ही ज़रूरी है आजकल। और इस हिसाब से आज थोड़ी बात भाई, क्योंकि जो रे हर कलर वाली भूमि है ना इसकी करें, क्योंकि रे वाली कलर वाली भूमि भी काफ़ी जगह ऐसी हो जाए है कि जड़े भी भाइयों का झील झोंका इलाका है या फिर कुछ ज़मीनें ऐसी कि भाई गांव के सारे जोड़ के सारे खुद अन्या के सारे ज़मीन में बहुत सी कमियाँ आ जाए हैं। कितने न कितने ये देखे हैं कि भाई भूमि सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो कलर भूमि ने मोटे तौर पर लगभग हम दो बागाम बाट की सुधार करना इसका, क्योंकि लवणीय है इसमें क्षारीय है, तो जड़े जड़े भी फसल नहीं होती, और जड़े जड़े फसल नहीं होती उड़े बहुत से भाई इससे अलग अटकी थोड़ी खेती थे मछली पालन का जो काम है वहाँ खुदाई करके वो भी काम चला रही हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत जो पानी है ट्यूबवेल वाला पानी है चवे वाला पानी है उससे मछली पालन जो है उसके है। चलो कुछ बात करांगे डटकी भाई रे और कलर भूमि सुधार के बारे में, लेकिन भैया ती रागनी सुनवाऊंगे चंद्र लाल रंगीले की गाई हुई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: On the occasion of Fibroids Awareness Month, we are spreading awareness about heavy menstrual bleeding associated with uterine fibroids. So today we have Dr. Pallavi Mittal from Rohtak. Doctor, what symptoms suggest that heavy menstrual bleeding may be caused by fibroids?
5: So basically, the heavy menstrual bleeding can have a lot of causes. But when it is due to fibroids, the patient can have pain in abdomen and will have clots in it, you know. I mean, they're like solid blood parts in the menstrual blood, and when you pass clots during periods, then it's a major sign that it could be fibroids. And of course, there can be, the patient can have spotting in between two periods also. So if the patient has all these kind of symptoms, then they should think that they might have fibroids. In between two periods, some patients can experience a little bit of spotting, like they'll see a spot of blood on their underwear. So if they have that kind of spotting, then they can have fibroid or fibroid polyp.
4: Issued in public interest by Inka Life Sciences, a division of Sun Pharma.
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये तो सुनी भैया ने रागनी और जकर बाड़ा ही अपना चल रहा था जो कलर भूमि सुधार है, क्योंकि रे और कलर भूमि ऐसी हो है कि भाई उसने खास तौर पे तो अपना लगभग नहरी पानी जो है वो बहुत ही सुधारण में मदद करे है। उसके लगभग हम 6-8 हिस्से ही बना सके हैं, नरे नरे बागाम इसे बनावें और ऐसी तैयारी खेत की हम करें ताकि जो पानी है वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे चले आ जावे, कोई बाहरी पानी उसके अंदर भी नहीं आन पावे और अपना जो खेत में हम पानी दे वहाँ वो बाहर तह निकलन भी नहीं पावे, क्योंकि जब हमारा पानी आहिस्ता आहिस्ता उसका मरीसना शुरू हो जाएगा तो जो तत्व हैं लगभग सारी भूमि में सोडियम कार्बोनेट एक मुख्य घुलनशील तत्व ऐसी भूमि का लगभग pH जो अधिमान हो 8.5 से ज़्यादा हो है और विनिमयनशील सोडियम की मात्रा भाई इसमें अधिक हो है 15% तक हो है। इनने भी उचित फसल चक्रा का प्रबंधन क्रियाएं थे जिप्सम आदि का प्रयोग थे सुधारा था उसके हैं, क्योंकि जो जिप्सम है काफ़ी अति जो लवणीय है या फिर क्षारीय भूमि है उसमें सुधारण का काम कर रहा है और लवणीय भूमि में मुख्यतः भाई कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड और सल्फेट थे बने जो नमक की मात्रा हवा ज़्यादा हो है, इसी वजह से इसमें फसल जो हमारी इतनी नहीं उड़ पाती। ऐसी भूमि ने खास तौर पर थोड़े फसल चक्राते हैं कुछ जो प्रबंधन क्रियाएं हैं ठीक अपना की इस नाम सुधार चुका हाँ। लवणीय भूमि के सुधार के तरीके काफ़ी हों हैं, इसमें 1 एकड़ खेत नाम 8 बराबर हिस्सा में प्लाट में बांट लिया और लगभग हरेक प्लाट ने 4 और 30 सेंटीमीटर ऊंची मजबूत डोली बनावा, इसमें प्लाटा की जो पूरी सावधानी था हम समतल करा, इसके बाद में प्लाटा 2 बराबर 15-15 सेंटीमीटर पानी था हम भर देवा, भूमि की लगभग 30 सेंटीमीटर तहीं जो होता है हमें पहले के मुकाबले में 10% भी कम लवण रह जाएंगे इसने, क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा।

नीचे बैठ जाएंगे। और शुरू में नमक सहनशील और अर्ध सहनशील फसलें उगाऊँ, जैसे कि भाई कपास होगी अपनी, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ये पानी ने थोड़ा हा पर्याप्त मात्रा में इस ऐसी भूमि में ओट जाए हैं हो जाए हैं, क्योंकि काफ़ी अति जो जो है कपास है गेहूँ है थोड़ी उठ जाए, ऐसी भूमि में सघन फसल चक्र अपनाने ताकि भूमि में जल सतर नीचा रहे और लवण जो है ऊपर ना आन पावे। तो ये काफ़ी कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपना कि हम जो कलर भूमि है लवणीय भूमि है इसका सुधार कर सके हैं। और भूमिगत जल की किस्म जैसे कि जल स्तर 2 मीटर तई और ऐसे खेतों की जो सिंचाई हो नियंत्रण रूपता हमें करनी चाहिए, चाहे हमारे पास कोई साथ में तालाब हो उसका पानी हम दे सकते हैं, जो नहरी पानी है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये कुछ एक तरीके अपना कि चाहे लवणीय क्षारीय भूमि है इसका सुधार काफ़ी हद तक हम कर सके हैं, जिप्सम का इसमें इस्तेमाल काफ़ी हद तक हम कर ले हैं। तो चलो ये टाइम हो रहा भैया रागनी का, तो भैया एक रागनी और सुनवा दे हैं, चंद्रलाल रंगीले की गाई।

तो ये सुनी भैया चंद्रलाल रंगीले गाई हुई रागनी, और भाइयों इसी रागनी के साथ ही देख ले घड़ी कानी कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त कर लेंगे। सारे भण भैया ने आराम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में आज शाम 5:10 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:09 हुए हैं। अब हमारी तीसरी सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
1: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
2: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहाँ पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहाँ पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे CDA में, उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज़्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यू टर्न था, और उस पहले यू टर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते, जहां हो जैसे हो वहां पर आपको अपने परिश्रम से अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस ला के छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
1: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?

0: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो, पहले एनडीए में फेल हुए हैं, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, एनडीए में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया है, लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो। और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में सीडीएस की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर सीडीएस में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाई फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
0: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही उन दिनों, 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सब के सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहाँ की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहाँ पहुँचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे?
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको, उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं एक अखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था उस सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन, लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा। उसकी सुबह कैसे हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसीओ साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी, लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13 14 को, मेरे उठने पर बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई, वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे, तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूँ उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया। रास्ते में वो

0: स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डिक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया। लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल रजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाज़ा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे। तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था। वो कर्नल राजेंद्र सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं। परेशान करते होंगे आज भी?
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंग करना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे

0: बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने को बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है। ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो वो शायद भगवान की दी हुई सोच थी, और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी की आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम हैं। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद 21 किलोमीटर भाग के आया, तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
1: जी
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नज़रिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, एनजीओ है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
1: जी
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा। जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
1: जी
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज़्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने ईयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था। और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पर जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ द सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है, उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है, उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए हो। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं, और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
1: अभी आप सुन

0: रहे थे। करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

युवा संसार सुन रहे सभी साथियों को आपकी साथी रिशिता का नमस्कार। साथियों, आज है 25 जुलाई और प्रतिवर्ष ही 25 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को डूबने की दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करना तथा इनके बचाव के उपायों की जानकारी देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोग डूबने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों और युवाओं की होती है। यह दुर्घटनाएं अक्सर नदियों, तालाबों, समुद्र तटों और स्विमिंग पूल जैसे स्थानों पर होती है, जहां सावधानी की कमी या तैरना न आने के कारण जोखिम बढ़ जाता है। डूबने से रोका जा सकता है। तैरना सीखें, अपने आप को और अपनी देखभाल में बच्चों को पानी में सुरक्षित रहने की स्किल्स दें। बच्चों की निगरानी करें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। उन्हें पानी के पास कभी अकेला ना छोड़ें। पानी के पास कोई शराब नहीं, शराब पीने से डूबने का खतरा बढ़ जाता है। पानी के आसपास सतर्क रहें, आसपास के बारे में जागरूक रहें। पानी की स्थिति तेज़ी से बदलती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें। लाइफ जैकेट जान बचाती है। बोटिंग करते समय हमेशा एक पहने, क्योंकि डूबना एक अनदेखा संकट है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हम आपके लिए लाते हैं कार्यक्रम रोजगार समाचार विशेषांक। तो कार्यक्रम में पहला रोजगार समाचार है, एम्स की ओर से नॉर्सेट 11th भर्ती 2026 जारी की गई है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या बीएससी पोस्ट बेसिक बीएसएससी नर्सिंग डिग्री वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं aimsexams.ac.in पर। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं, aimsexams.ac.in पर। पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। अंतिम तिथि है 13 अगस्त 2026। आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष। सेलेक्शन प्रोसेस है CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग के लिए ₹3,000 और SC ST और EWS वर्ग के लोगों के लिए ₹2,400। अगला रोजगार समाचार है, रेलवे RRB टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 29 जुलाई तक भरे जाएंगे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 6,575 रिक्त पदों को भरना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। ये रिक्तियां मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य सहित विभिन्न RRB जोन में वितरित हैं, क्योंकि पदों की संख्या जोन के अनुसार भिन्न भिन्न है। अगला रोजगार समाचार है, JSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के तहत JTAACCE पैरा टीचर के लिए भर्ती जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 30 अगस्त 2026 को समाप्त होगी। आयोग द्वारा रिक्तियों के लिए निर्धारित आयु सीमा 21 वर्ष से 35-40 वर्ष है। श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। वेबसाइट आपको दोबारा बता रहे हैं साथियों, नोट कीजिएगा, jssc.jharkhand.gov.in। आवेदन शुल्क है सामान्य और OBC और EWS वर्ग के लिए ₹100, SC ST के लिए ₹50 और PWBD को शुल्क से छूट दी गई है। कुल पद हैं 7,299। योग्यता अंक की बात करें तो युवा WES के लिए 40%, SC ST और महिलाओं के लिए 32%, EBC के लिए 34%, BC के लिए 36.5%, प्राचीन जनजातियों के लिए 30%। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा PET या PST होगा और फिर चिकित्सा परीक्षा होगी। अगला रोजगार समाचार है, IDBI बैंक ने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए विशेषज्ञ अधिकारी भर्ती 2026 जारी की है। योग्य उम्मीदवार 26 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों में ऑडिट, कानून, सुरक्षा अधिकारी और IMD पद शामिल हैं। इसे आगे डिप्टी, असिस्टेंट और जनरल मैनेजर जैसे पदों में डिवाइड किया गया है। कुल पद हैं 31। वेबसाइट है idbi.bank.in। वेबसाइट हम दोबारा बता देते हैं,
idbi.bank.in। आवेदन शुल्क है SC या ST या PWD के लिए 250 रुपये, जनरल या EWS या OBC के लिए 1,050 रुपये। शैक्षणिक योग्यता रहेगी ऑडिट IS के लिए। उम्मीदवारों के पास IT में BTEC या BE या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान या डिजिटल बैंकिंग या BCA या BSc भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से होना चाहिए। IMD के लिए उम्मीदवारों के पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में BTEC या BE योग्य होना चाहिए या डुअल विशेषज्ञता जिसमें एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। कानून के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कानून के विषय से स्नातक होना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। साथियों, आपको रोजगार समाचार ऐसे ही सुनाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं गीत फिल्म एक्शन रिप्ले से। आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

साथियों, भी हमने सुना ये गीत फिल्म एक्शन रिप्ले से। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल की, बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था प्रीतम ने। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अगला रोजगार समाचार है आप सभी के लिए। IHMCL 30 सिस्टम इंजीनियर पदों पर भर्ती कर रहा है। UK इंजीनियर स्नातक 2 अगस्त 2026 तक IHMCL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UR के लिए 14 पद हैं, OBC के लिए 8, SC के लिए 4, ST के लिए 1 और EWS के लिए 3, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 पद शामिल होगा। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रहेगी। शिक्षा की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और संचार, डेटा विज्ञान, AI में BE या BTEC। चयन क्राइटेरिया रहेगा वैलिड गेट स्कोर 2026 CS, EC या DA विषय में, और चयनित होने पर इंटरव्यू होगा। पे स्केल की बात करें तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक होगा। अनुमानित मासिक वेतन रहेगा अलाउंस सहित लगभग 1,00,000 रुपये। सर्विस बोंड की बात करें तो 3 साल की सेवा के लिए 3,00,000 रुपये होंगे। वेबसाइट है IHMCL.co.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं, IHMCL.co.in। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले रोजगार समाचार की तरफ। IIT ISM धनबाद ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त है। PhD योग्यता अनिवार्य है। मासिक वेतन 2.11 लाख रुपए तक होगा। 17 विभागों में अवसर मिलेंगे, जो हैं CSE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EE, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, गणित एवं कंप्यूटिंग, PCB, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग सहित अन्य विभाग होंगे। वेबसाइट है IITISM.ac.in। वेबसाइट हम दोबारा बता देते हैं, IITISM.ac.in। अगला रोजगार समाचार है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

इम्फाल मणिपुर ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 9 अगस्त 2026 तक ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को केवल एक इंटरव्यू के आधार पर भर्ती के साथ 50,000 तक का मासिक वेतन प्राप्त होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 9 पद हैं, जेई सिविल के लिए 1, पीआरओ के लिए 1 पद। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास कम से कम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेलेवेंट डिसिप्लिन में बीई या बीटेक या पीजी डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए उम्मीदवारों के पास योग्य नेट या एसईटी भी होना चाहिए, जहां भी लागू हो। आयु सीमा की बात करें तो 35 से 40 वर्ष होनी चाहिए। वेबसाइट है www.nsu.ac.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं, www.nsu.ac.in। अगला रोजगार समाचार है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने लगभग 4,088 रिक्तियों के लिए आरआरबी जेई भर्ती 2026 जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि ध्यान से सुनिए साथियों, 13 सितंबर 2026। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 6 के तहत 35,400 के प्रारंभिक वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में CBT-1, CBT-2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। वेबसाइट दोबारा नोट कीजिए साथियों, rrbapply.gov.in। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से रेलेवेंट इंजीनियरिंग अनुशासन में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा रहेगी 18 से 33 वर्ष। अगला रोजगार समाचार है, रेलवे भर्ती सेल मध्य रेलवे विभिन्न खेल कोटा पदों के लिए भर्ती कर रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.rrccr.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.rrccr.com। भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 59 पदों को भरा जाना है, जिनमें से 38 स्तर 1 पर उपलब्ध हैं और 21 समूह सी के लिए। अगला रोजगार समाचार है साथियों, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 www.rrb.indianrailways.gov.in पर 119 रिक्तियों के लिए जारी की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं www.rrbapply.gov.in पर। चयन प्रक्रिया के तहत CBT के बाद CBAT और DV और चिकित्सा परीक्षा होगी। प्रारंभिक वेतन रहेगा 35,400 रुपये। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 33 वर्ष होनी चाहिए। अगला रोजगार समाचार है, 1213 एग्जीक्यूटिव जिसमें 208 होंगे और नॉन एग्जीक्यूटिव 1005 पदों के लिए AVNL भर्ती 2026 आज बंद हो जाएगी, यानी 25 जुलाई 2026 को। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट avnl.co.in पर पदों के लिए आवेदन करें। वेबसाइट है दोस्तों avnl.co.in। आवेदन शुल्क जनरल EWS OBC के लिए 300, SC ST PWA भूतपूर्व सैनिक और महिला के लिए छूट प्राप्त होगी। अगला रोजगार समाचार है, NMDC स्टील लिमिटेड ने विभिन्न विषयों में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 102 रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 11 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 500 रुपये रहेगा। चयन प्रक्रिया में CBT, BD और इंटरव्यू शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने का ट्रेनिंग देनी होगी, जहाँ उन्हें प्रतिमा 50,000 का मूल वेतन दिया जाएगा। वेबसाइट है nsltd.in। वेबसाइट दोबारा नोट कीजिए साथियों, nsltd.in। साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। उम्मीद है मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल

0: चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पहले जानते हैं आज के शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इन दोनों कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शाम 7 बजे हम आपके लिए पेश करेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8:25 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सुगम संगीत। कार्यक्रम एक फिल्म से का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। शाम 6:20 पर सुनिएगा कृषि जगत। विषय रहेगा बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल और साथ ही आप सुनेंगे बातचीत। पशुओं में थनैला रोग कारण और उपचार, जानकारी देंगे डॉक्टर शक्ति मलिक। कार्यक्रम ग्रामीण संसार आप सुनेंगे शाम 7 बजे। विषय रहेगा एकता में अनेकता और साथ ही आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अब सुनिएगा कल के आकर्षण। कल विशेष सभा में सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात। कल शाम 7:30 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच। युवा संसार का समय रहेगा कल शाम 5:30। विषय रहेगा कारगिल विजय दिवस और साथ ही आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत युवा पसंद। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। दोपहर 12:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम घर आंगन का। विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव पारिस्थितिक संरक्षण दिवस, कारगिल विजय दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। साथ ही आप सुनेंगे बातचीत, हेपेटाइटिस रोग कारण और इलाज। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा। कार्यक्रम बालकुंज का समय रहेगा कल सुबह 8:30। कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम सुबह सवेरे का समय रहेगा कल प्रातः 7:35।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रधान ने कहा उन्होंने विद्यार्थियों के हित में इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुन्हाना में आयोजित मेवात विकास संकल्प रैली में मेवात क्षेत्र में करोड़ों रुपयों के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य पूरा हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विकास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के कई मेधावी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आज गुरुग्राम में जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को शहर की स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
1: हमने आज इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा है कि गुरुग्राम की स्वच्छता, गुरुग्राम के सौंदर्य को लेकर के इसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारी भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है, कोई व्यक्ति कहीं पर भी इलीगल तरीके से सीएनडी वेस्ट नहीं डालेगा, उसकी वो व्यवस्था करे। अगर कोई सीएनडी वेस्ट कहीं गलत डाल रहा है तो अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से 13 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को अगली बैठक में इन लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सीएम विंडो को लेकर भी शिकायत मिली।
1: कुछ समस्याएं सीएम विंडो को लेकर के आई है, उसको लेकर के भी मैंने कहा है कि जो भी सीएम विंडो के ऊपर शिकायत आती है, अधिकारी उसका निवारण सुनिश्चित करे। और अगर, क्योंकि जब मैं स्वयं देख रहा हूँ, किसी की कोई दुर्भावना अगर सीएम विंडो के अंदर नजर आई तो कार्रवाई हो जाए। हमारी ड्यूटी है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि सीएम विंडो पर आई जो शिकायतें हैं उनको गंभीरता से लें, उनका निवारण करें ताकि लोगों को इससे राहत मिले।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में नगर निगम मानेसर क्षेत्र के वजीरपुर इनक्लेव की विभिन्न जनसमस्याओं को सुना गया। इनका संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को कॉलोनी की समस्याओं का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से।

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। बाद में नई दिल्ली से सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इन मांगों को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आत्महत्या करने वालों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार पूरी सहानुभूति रखती है और नियमों व विनियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा देना सुनिश्चित करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नूह के पुन्हाना में आयोजित मेवात विकास संकल्प रैली में मेवात क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पुन्हाना की ये धरती एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बन रही है। वर्षों तक उपेक्षा झेलने वाले मेवात ने अपनी नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: साथियों, विकसित भारत का रास्ता ये दिल्ली से चंडीगढ़ होकर के नहीं जाता, बल्कि विकसित भारत का रास्ता हमारे पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका, हमारे तावड़ू, हमारे नगीना और हमारे मेवात के हर गांव से होकर के चंडीगढ़ जाता है। मैं बड़े विश्वास के साथ आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूँ कि हमारा मेवात विकास की एक नई पहचान बन सकता है, ये अवश्य बनेगा और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बदलाव जनता के विश्वास, सहभागिता और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ, हर जरूरतमंद तक सुविधा और हर परिवार तक विकास पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के लिए पिनगवा या पुन्हाना में विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की जाएगी। उन्होंने पुन्हाना नगर पालिका में 16,85,00,000 रुपए की लागत से ऑडिटोरियम एवं बहुउद्देशीय हॉल, 13,75,00,000 रुपए की लागत से खेल स्टेडियम, पिनगवा खेल स्टेडियम के नवीनीकरण, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का डिवीजन और सब डिवीजन कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसके अलावा बिजली विभाग के 32 कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए, 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2,40,00,000 रुपए देने सहित कई घोषणाएं की। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसे वेबसाइट के साथ हर जगह प्रकाशित किया जाएगा।
2: जो नेक्स्ट स्टेज हमारी है, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिशिंग का है, वो 31 जुलाई 2006 हम आपका पब्लिश करेंगे। इसमें इस ड्राफ्ट रोल को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बूथ लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीएलओ द्वारा किया जाएगा और सभी वेबसाइट पे, सीओ वेबसाइट में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ईआरओ वेबसाइट में भी पूरा लिंक दिया जाएगा इसका। इसके अतिरिक्त हर एक ऑफिस में, लाइक जैसे पंचायत में भी, जहां भी बूथ है, अर्बन लोकल बॉडीज में एएसडीडी का लिस्ट पेस्ट किया जाएगा। जो भी नाम उसमें और छूटे हैं, कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है।
0: अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रधान ने कहा, उन्होंने विद्यार्थियों के हित में इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत। पहले सुनेंगे संदेश।

0: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल भाइयों मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम ये देखे हैं कि अपने भाई आज चौपाल के बारे ये देखे हैं कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बरसात का मौसम है। और पूरा जो अपना हरियाणा प्रदेश है इसमें अगर बात करी जाए कि जो भी अपना बरानी इलाका है या फिर जड़े भी धान वाली बेल्ट हैं अपनी, तो वहाँ पे पूरी पर्याप्त जहाँ भी, क्योंकि अब तीन जो किसान भाई आशंका लगा रहे थे कि जिस चीज़ की भरपूर ज़रूरत थी बरसात की, वो अभी पूरा हरियाणा प्रदेश में नहीं हुई है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि जड़े भी बरानी इलाके में भैया ने किते भाई बाजरे की बिजाई थी या फिर किते गवार या फिर जो भी हरे चारे लगाने थे भाई कितने न कितने भाई मूंग का भी, ये देखा है कि पूरा हरियाणा प्रदेश में बरसात हो जाए तो बरानी इलाका का भी काम चल जाए। इसके अलावा फिर अपना जो खास तौर पर अपना जो धान वाली बेल्ट हैं भाई उड़े ये देखे हैं कि भैया पे पर्याप्त पानी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं साल दर साल जो अपना वाटर लेवल ज़मीन का जो चोवे की अगर बात करें तो साल दर साल जो है नीचे जाना जा है। अगर पर्याप्त बरसात हो जाए तो फिर अच्छा खासा चाहे वो धान का इलाका हो या फिर अपना चाहे बरानी इलाका हो चाहे अपने समतल वाले इलाके हों, जड़े भी किसान भैया ने बाड़ी की बिजाई कर रखी है भैया अरहर की बिजाई कर रखी है, बहुत सी ऐसी फसलें हैं कि जो खरीफ फसल में ली जाएँ। और ये देखे हैं कि भाई जड़े भी अपने बाड़ी के इलाके हैं या फिर अपना अरहर के इलाके हैं, क्योंकि कपास के भाव भी और अरहर के भाव की बात करी जाए तो भी काफ़ी आजकल महंगी बिके हैं ये फसलें और निरंतर हर जगह पर ये ओणते भी रहेगी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो कपास फसल थी उसमें चाहे अमरीकन लगा ले हैं देसी लगा ले हैं भाई फल मक्खी का आक्रमण का भी हो जाए है, और कहीं ना कहीं जो चौवे वाले इलाके हैं कि तो उगेड़ा खा जाए भाई कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बरानी इलाके में भाई ले हुए हैं भाई अपना आराम को ऊपर निर्भर हों बरसात पर निर्भर वाले इलाके में कहीं ना कहीं या शुरुआत में कुछ गर्मी के कारण कुछ ताती लुआ के कारण निकल गया है। इसी तरीके से जो अरहर की इलाके हैं अरहर वाले अरहर की भावी बहुत महंगे रहे हुए हैं, लेकिन उड़े भी निराई गुड़ाई अपना भाई थोड़ा पर्याप्त अगर हर एक फसल में, क्योंकि शुरू तो हम देसी जो खादे थे वो अपना की चल कर दे, आज देसी खादा की बात का जिक्र आओ है तो वही वह बात नहीं रही है, क्योंकि ना तो हमारे पास वो पशुधन रहा ना हमारे पास वह देसी खादा का प्रबंध रहा, क्योंकि पहले अपने पास भाई पशुधन होया करता और कुरड़ी हो जाया करती तो भाई गली छड़ी खम तकम भी तैयार खाद दो तीन साल पुरानी जिसने कह दे हैं छड़ी हुई काली हुई उड़ी हो है वह अपने खेतों में लिया कर दी। आज चाहे हम खाली खेत हैं उरे बस ये देखें चाहे वो हरी खाद का बेशक हम इस्तेमाल कर ले हैं, लेकिन जो आजकल पुरानी जो गोबर वाली खादें की बात करी जाए वो नहीं है, बस कुछ ने कुछ है भाई अपना वर्मी कंपोस्ट की खादें हैं उन पर भी काम कर रहे हैं वह थोड़ी बहुत डाल रहे हैं, लेकिन देसी खादा तो बिल्कुल ही अपने चाहे वो युवा साथी लगा ले हैं किसान भाई जो भी हम बात कर रहे हैं जो रासायनिक पेस्टिसाइड हैं रासायनिक खादें हैं उनको पर ज़्यादा दारमदार हुए हैं। इसी वजह से जो अपनी धरती की उर्वरक जो शक्ति है वह भी काफ़ी अति कमज़ोर हो रही है और वह बातें हमारे पास नहीं रही हैं कि जो हमने खेती में एक थोड़े खर्चे कम कर की और देसी हिसाब से अपनी खेती में कम खर्च से आमदनी लिया कर दे वह बात नहीं है। आज ये देखे हैं कि ठेका बटाई की खेती के साथ साथ बहुत से खर्चे इसी जो हमने नहीं करने चाहिए वो किसान भाई कर ले हैं और फिर आगे चाल की दिक्कतें हैं, क्योंकि पर्याप्त भाव नहीं मिलता कितने न कितने जो हम रासायनिक खादें डाल रहे हैं चाहे वो यूरिया की बात करो ज़्यादा DAP ज़्यादा उर्वरक जो भी डालना है उन तो फसल में काचा पड़ रहा है, आगे चाल की कीट पतंग आज के दिन इतने आ रहे हैं भाई नुकसान कर दे हैं कितने भाई फसल उगेड़ा मार जा है कितने कितने लकड़न की दिक्कत आ जा है कहीं ना कहीं काचापण के तो भाई अपने जो कीट पतंगे हों इतने आ जाए हैं। आजकल जो धान की बात करें उसमें ऊपर की बहुत बीमारी इसी देखने में आई थी कि साल दो साल तो जो अपने किसान भाई हैं उनका भाई पता ही नहीं लग गया ये हो के रहा है कि बड़ में भी नहीं आई, बाद में तो चलो इसकी तो दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, लेकिन थोड़ा कारण हमारा यो ये रहा है कि भाई बिना देखे अनसमझे जो हम खर्चे करा चाहे यूरिया ज़्यादा डालना हो, यूरिया में एक दूसरे किसान भाई ने देख के भी ज़्यादा गिर दिया है कि भाई ठेके बटाई का खेत है, इसमें बाद में मिले ना मिले खर्चा कर बैठे हैं, फिर वो आगे फसल में भी दिक्कत आओ मेरे भाई। लेकिन ये हो गया है कि जहाँ भी अगर देसी खादा की बात करी जाए, वर्मी कंपोस्ट की अगर हम थोड़ी बहुत केचुआ खरीद की भाई उसकी थोड़ी बहुत जानकारी ले कि हम घर ने तैयार कर लिए अपने घर पर, तो वो हरेक पेड़ पौधे में लेके चाहे वो हमने बसरते ये माना है कि थोड़ा बहुत कोई प्लाट में या फिर किधर छत पे ऊपर हमने किचन गार्डनिंग करा की है, फिर कोई अपने भाई पहले बटूड़ा पे बेल चढ़ाया कर देगी, या इस टाइम को ऊपर त्योरी बहुत छः चौमासे टाइम पे अपनी जो घर की सब्जी थी वो उतरिया कर दी। लेकिन आज वह बात भी नहीं रही है कि अपनी कितने बड़ाई में कितने बटोड़ा पे कितने भाई ये देखें कि कोई घेर क्यार जड़े भी हमारा खेत खाली है, उड़ा हम घर के लिए भी सब्जी फसलें नहीं लगा रही जो पहले देसी और बिल्कुल निरोगी हुआ करती, जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड कोई भी दवाई का प्रयोग नहीं हुआ करता। बस अपने बुजुर्ग थे भाई नू कहा कर दे, अपनी माताएं थी दादी और थी नू कह दे भाई एक अपने नीम के पत्ते लेके उसमें चाहे गुगड़ की धूमनी कर दे हैं, या फिर भाई अपना कोई थोड़ा बहुत नीम का अर्क बना के नीम का तेल लेके उसका में छिड़काव कर दे हैं तो कीट पतंगे काफ़ी अति दूर हो जाते, तो पहले ये निरोगा खाना हुआ करता। लेकिन आज सघन खेती के कारण चाहे वो हम बेल वाली सब्जी फसलें की गरीब बात करी जाए तो भाई चाहे वो बहुत सी सब्जियां फसलें बचाई में घिया लगा ले हैं, त्योरी लगा ले हैं, टिंडा लगा ले हैं, कद्दू लगा ले हैं, पेठा लगा ले बहुत से भाई इसमें दिन रात, क्योंकि कीड़ा इतना हो गया है और फल दारमदार आजकल अगेती वराइटियाँ इतनी आ रही हैं जो भी हाइब्रिड वराइटियाँ हैं वो फल इतना दे दे हैं आगे चाल की वो बाज़ार भाव नहीं मिलता। लेकिन वो सेहत के अनुसार भी हमारा खिलवाड़ हो रहा है, सेहत के साथ भी जो हम दिन प्रतिदिन जहर की टंकियाँ ठाई फिरा हाँ इनके मैं छिड़की जावा हाँ, तो वो ये जहर भाई सब्जी के साथ साथ अपने शरीर में भी आओ है, बालक बच्चा ने भी पूरा घर ने प्रभाव करे है। और फिर इसी तरीके से चाहे वो पशुधन की बात करें हैं, पशुधन में भी वो देखे हैं कि भाई चाहे वो हरा चारा के साथ साथ हम स्प्रे लगाने लगा हाँ, जब भी हम बिजाई करा हाँ भाई ज्वार की बिजाई कर दी, मक्का की बिजाई कर दी, जब टंकी ठाकी भाई इसमें कीड़ा नहीं आना चाहिए, तो ये जहर कहीं ना कहीं हमारे जो पशुओं के साथ आज दिक्कत आ रही है, चाहे वो थनेल की हम बात कर ले हैं, अदम ब्यात की बात कर ले हैं, कहीं ना कहीं भाई पशु पीछा दिखाओ है, फूल दिखाओ है, बहुत सी पशुओं में आज इतनी बीमारी आ रही हैं कि वो जो एक खुटती सीमित होने का कारण ये भी नहीं है कि वो एक खान पान का बहुत सा प्रभाव पड़ गया हमारे, क्योंकि पहले जो अपना पशु था वो बाहर खुलिया करता चरकिया करता जंगल की हर एक प्रकार की औषधि जो भी घास फूस होता उसमें पूर्ति हो जाती, पशु वहाँ डैफरिया करता, उसकी जो पाचन क्रिया थी पाचन शक्ति थी वह पूरी रहा कर दी। और आज एक हम सीमित सा भाई चाहे वो दलिया लागे तो दलिया गिरने लागे किसान भाई, लेकिन बहुत सी चाहे अपने भाई वो किसान भाई हैं पशुपालक भाई हैं चाहे वो गृहिणी माताएँ हैं जो भी पशु रखे हैं, एक तो पर्याप्त जो खनिज मिश्रण इस्तेमाल करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, एक जो चाट बाखर वंटा जिसने कह दे हैं कि पूरा एक रांध की देना या फिर चार प्रकार के नाज सा का इसका मैं इस्तेमाल करना, कहीं ना भाई गेहूँ का दलिया हो गया, चोकर हो गया इसमें भाई, कहीं ना कहीं इसमें चना हो गया और बाजरे का थोड़ा बहुत मिला हो गया, सिंधा नमक हो गया, खनिज मिश्रण का मिला हो गया, हर प्रकार के जब पशु ने पोषक तत्व पूर्ति होगी जब जाके वो पशु ठीक टाइम पर गया बन होगा ठीक टाइम पर नया दूध रहेगा आगे तो ही वो फिर देखें कि लंबा टाइम तो दूध भी दे होगा, कहीं ना कहीं ऐसा इस तरह उसमें हर एक रोज़ भाई अपने जो उसकी चाट बाखर बंटा डालना हाँ, क्योंकि चौमासे का टाइम में नियमित सफाई रखने का भी काफ़ी हद तक हमारा फर्ज बने है। जो भी किसान भाई पशुधन रखे है पशुधन के हम ये देखे हैं कि अपना एक बालक जैसा काम हो है कि जो भी हम पशु रखे हैं उसकी निरंतर सुबह दोपहर शाम तक लेके कई बार तो रात ने भी भाई पशुधन ब्यात आ जाए तो उसको खाली

0: अपनी पड़े, फूल देखाओ तो सारी सारी रात उसके पीछे बैठे रहना पड़े है, बहुत से ऐसे काम हो जाए हैं। तो आज एक पूर्व प्रसारित बातचीत है, पशुओं में जो थनेला रोग आ गया है उसके के कारण वो है, उसका उपचार हम किस तरीके से कर सके हैं। तो एक पूर्व प्रसारित बातचीत है भाइयों, डॉक्टर सुनीता यादव जी अपने चौपाल में आई थी, ये बातचीत भैया ने सुनवा दी।
1: भाई आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा थनेला रोग, कारण, उपचार और बचाव। और आज स्टूडियो में हमने इस बातचीत के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर सरिता यादव जी को। आप केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार से पधारी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले तो ये जानकारी चाहेंगे कि ये थनेला रोग क्या है।
2: जी, अक्सर किसान भाई जो हैं यह शिकायत कहते हैं कि उनकी भैंस या गाय है उसके थन में सूजन आ गई है, लेवटी में दर्द हो रहा है और जो दूध में छेंछड़े आ रहे हैं, खून आ रहा है, पानी सा दूध हो रहा है, तो दूध में बदबू आ रही है। इससे किसान पहचान लेता है कि उसको थनेला रोग हो गया है। लेकिन ये जो है थनेला रोग, जो पहचान जो आंखों से आप पहचान सकते हो उसको हम कहते हैं लाक्षणिक थनेला रोग, यानी कि जो आप देखकर पहचान सको। हाँ जी, लेकिन जो ज़्यादातर थनेला रोग होता है वो सब क्लिनिकल फॉर्म में होता है, यानी कि अलाक्षणिक होता है, आप उस लक्षण रहित होता है। किसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी भैंस को थनेला रोग है, लेकिन उसकी दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे लेवटी में सख्त होने लग जाती है और फिर आखिर में जब वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तब लगता है कि हाँ इसको मतलब थनेला रोग हो गया है। उसे हम कहते हैं अलाक्षणिक थनेला रोग।
1: डॉक्टर साहब, इसमें कारण क्या रहता है, किस वजह से, कोई जीवाणु है, विषाणु है, क्या कारण होता है?
2: जी, जो ये थनेला रोग होता है ना, ये ज़्यादातर जो है जीवाणुओं से होता है, बैक्टीरियल कोज होता है इसका, जीवाणुओं से ये फैलता है। और जीवाणु दो तरह के इसमें हमने विभाजित कर रखे हैं। एक तो होते हैं कि जो कि लेवटी और थन के चमड़ी जो होती है इसके ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं, इसके ऊपर होते हैं ये जीवाणु, और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अंदर थन की नली से अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये संक्रामक रोग फैला देते हैं। इसे हम कहते हैं ये कंटेजियस मेस्टाइटिस कहते हैं, थनेला रोग, यानी कि जो कि
1: छूने से।
2: हाँ जी, इससे होता है। और ये इसका मुख्य कारण क्या होता है, जो गवाले होते हैं, जो दूध निकालने वाले होते हैं दुहारे, उन्होंने किसी गाय भैंस का जो संक्रमित है उसका दूध निकाला और फिर दूसरी का निकाल लिया, तो उसी हाथों से वो संक्रमण दूसरी में जो स्वस्थ भैंस है उसमें चला जाता है। या फिर जो बाल्टी आपने यूज़ करी है उसमें ये जो जीवाणु है ना एक बायोफिल्म बना लेते हैं, यानी कि एक परत सी बना लेते हैं। हाँ जी, और फिर वो उससे फिर वो इन्फेक्शन स्वस्थ में चली जाती है। और दूसरा थनेला रोग इसमें आता है पर्यावरण से होने वाला, यानी कि भैंस के आसपास जो गंदगी होती है, उसके गोबर होता है, उसमें जो जीवाणु होते हैं, जैसे ईकोलाई है इसका मेन, क्लेबसेला है, वो जो है दूध निकालने दो दूध के अंतराल के बीच का जो टाइम होता है ना, उसके दौरान वो उसके थन की नली के अंदर चले जाते हैं और संक्रमण करते हैं। और इस रोग की जो वातावरण से जो होता है ना, ये ज़्यादातर रोग तीव्र रूप में होता है, यानी कि कहते हैं कि अंगारा
1: लेवटी,
2: हाँ जी, और एक्यूट फॉर्म में होता है ये। और जो स्किन से जाता है, कंटेजियस होता है, वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है,
1: यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसका असर होगा।
2: हाँ जी।
1: तो ये जो आपने बताया कि पर्यावरण से होने वाला है
2: जी,
1: तो ये जब भैंस बैठती है या चारा वारा लेती है या कई बार जैसे झोड़ में भी लेके जाते हैं, तो क्यों उन जगह से ये लग सकता है?
2: हाँ जी, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो ये पर्यावरण वाला जो जीवाणु है ये थन की नली में कैसे मतलब जाते हैं। तो इसके लिए हम बचाव के लिए यही हमेशा किसान को बताते हैं कि दूध निकालने के बाद भैंस को कम से कम आधे घंटे तक बैठने ना दें, जोड़ में मत ले जाएं। क्यों? क्योंकि दूध निकालने के बाद जो दूध की जो छिद्र होता है, थन की नली का छिद्र होता है, उसको बंद होने में धीरे धीरे आधा घंटा लगता है और उस दौरान यह जीवाणु जो है चला जाता है। और दूसरा हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो आप एक प्री डिप और पोस्ट डिप फॉर्मूलेशंस आती हैं मार्केट में, यानी कि दूध निकालने के बाद थन चारों थनों को एक दवाई होती है उसमें डुबोना होता है,
1: उस दवाई का घोल है उसमें जो थन है,
2: हाँ
1: वो
2: जी, डुबोने होते हैं। उससे फिर क्या होता है, वो एक परत बना लेते हैं, तो उस परत की वजह से फिर वो जो जीवाणु है ना वो थन के नली में नहीं जा सकते। अब किसान भाई कहते हैं कि हम ये लाएं कहाँ से घोल
1: जी।
2: तो जो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो तो उनको तो मिल जाता है ये, वो तो कहीं से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो सिंपल फार्मर है उसको मैं ये बताती हूँ कि इसको बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है।
1: आप बना सकते
2: हाँ जी, आप मार्केट में जो बीटाडीन मिलती है या पोविडोन आयोडीन कहते हैं, जो हम जब जख्म हो जाता है तो उस पर लगाते हैं, हाँ जी वो आप ले आओ। हाँ जी, और जैसे अगर आप 100 ml लेकर आ रहे हो तो उसमें आप 10% जो है उसमें ग्लिसरीन डाल दो, यानी कि अगर 100 ml आपकी बीटाडीन है तो उसमें 10 ml आपका ग्लिसरीन डलेगा। ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं ताकि थन की जो त्वचा है उसमें कोई कट वगैरह ना बने, अगर ये डुबोते हैं तो वो मतलब बिल्कुल चिकनी रहनी चाहिए त्वचा, नहीं तो उसमें भी जीवाणु एंट्री वहाँ से एंट्री कर जाते हैं।
1: वैसा कई बार ये देखा गया है कि दूध निकालने के बाद या निकालने से पहले वो थोड़ा सा जो दूध होता है उसका जो चिकनाई है वही उसके ऊपर लगाते थे, तो हाँ, क्या वो ठीक है?
2: नहीं, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना। आपको दूध निकालने से पहले आपको लेवटी को साफ करना है अच्छी तरह से, वो आप पहले तो आप उसको पानी से साफ करेंगे, फिर उसको एक स्वच्छ कपड़ा लेके उससे लेवटी को साफ करके और फिर आपने दूध निकालना है, और दूध पूरा अच्छी तरह सारा दूध निकालना है, रहने नहीं देना, क्योंकि अगर दूध थोड़ा सा भी जैसे रह जाता है थन में तो वो जीवाणु जो है वो उसके अंदर जाने की ज़्यादा हो जाता है। तो और उसके बाद फिर आप ये पोस्ट टीट डिप्स जो हैं ये इनका इस्तेमाल करें और हर थन में दे, तो आप इसके लिए कप रख लें कोई भी और उस कप में डाल लें, और हर भैंस का अलग अलग रख लें कप, जैसे एक कप लिया एक का तो उसमें वो चारों थन उसके डुबो दिए बीटाडीन में ग्लिसरीन के साथ। हाँ जी,
1: कप में जो आपने बताया घोल बनाया है उस घोल को में वो थन है एक एक करके वो उसमें डुबो दे और हर पशु का अलग रखें ये।
2: हाँ, हो सके तो ये घोल जो आप कप है हर पशु का अलग अलग रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, अब जिस तरह कई भैंस है या गाय है भैंस है तो उनका दूध एक ही आदमी वो निकालता है, तो उसमें भी आपने बताया कि एक से दूसरे पशु को ये लग जाते हैं।
2: ये हाँ जी, इसका भी बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप किसान को पता चलता है कि उसकी एक भैंस में थनेला रोग है तो उसका दूध वो सबसे आखिर में निकाल ले, और अगर उसको लगता है कि उसकी भैंस का एक थन में थनेला रोग है तो उस थन का दूध वो सबसे आखिर में उसका निकाल ले, और एक भैंस से दूसरी भैंस का दूध निकालना है तो हाथों को साबुन से धो के निकाल ले, और इसकी पहचान जो है ना महीने में कम से कम 2 बारी वो टेस्ट जरूर करें कि क्या थनेला रोग है कि नहीं। उसके टेस्ट के लिए एक तो CMT रिएजेंट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट रिएजेंट, ये मार्केट में मिल जाता है, पर हमारे किसान भाइयों को जैसे नहीं ले पाते हैं मार्केट में, कहते हैं कहाँ से लाएंगे ये रिएजेंट, तो इसके लिए इसको आप घर में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा सोडियम लोरेल सल्फेट करके एक डिटर्जेंट आता है, तो वो आपको 3% जो है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसका भी हम घोल वो बना सके हैं,
2: हाँ जी,
1: तो उसमें क्या क्या चीज़ें?
2: हाँ जी, वो CMT रिएजेंट है, घोल का नाम, वो मार्केट में मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो इसको आप बना सकते हैं। कैसे ये बनता किससे है? ये सोडियम लोरेल सल्फेट करके एक डिटर्जेंट आता है मार्केट में, केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा आपको, उसका आपको 3% घोल बनाना है, यानी कि 3 ग्राम ये डिटर्जेंट लेना है आपको, 100 ml पानी में घोल लेना, और फिर आप 4 प्याले ले लो, कटोरियाँ छोटी छोटी, और उसमें आप जैसे थोड़ा सा जब दूध निकालते हो तो उसकी 2-3 धार तो छोड़ देना, अच्छा। उसके बाद 2-3 धार उसमें कटोरी में डालना और उतना ही ये रिएजेंट डाल देना, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके हिलाओगे जब तो आपको आप इसको पढ़े इसको ऐसे रीड करना है कि अगर कोई चेंज नहीं आया, रिएजेंट डाल दिया, दूध डाल दिया, अगर कोई फर्क नहीं आया, वैसे की वैसी ही घूम रहा है, इसका मतलब थनेला रोग नहीं है, और जब थनेला रोग होगा तो ये बिल्कुल गाढ़ा जेल की तरह बन जाएगा और अच्छा। हिलेगा ही नहीं, बिल्कुल जेल बन जाएगी,
1: दही सी जम जाएगी।
2: हाँ जी, दही जम जाएगी, अच्छा। और अगर दही कम जमती है तो यानी कि थनेला रोग तो है लेकिन थोड़ा कम है, और इसकी रीडिंग आपको 10-20 सेकंड के अंदर लेनी है, 10-20 सेकंड में रिजल्ट दे देता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये घोल बना के हम इसका घर पर भी और कर सकते हैं, इसके अलावा भी कोई और जैसे आपने बताया अभी ये दवाई अगर नहीं मिल पाती है किसी दुकान पे तो कोई और इसका कोई सब्स्टिट्यूट या कोई और दूसरा?
2: हाँ जी, ये अगर केमिस्ट की शॉप पे अगर किसान सोडियम लोरेल सल्फेट जो डिटर्जेंट है ये केमिकल है, अगर ये नहीं मिल पाता है तो कोई भी वॉशिंग पाउडर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, उसका भी 3% घोल बनाना है, यानी कि 3 ग्राम अगर वॉशिंग पाउडर ले रहे हो अच्छी ब्रांड अच्छी कंपनी का ले लो, हाँ जी 3% बनाना, यानी कि 3 ग्राम ये लिया और 100 ml पानी लिया और घोल के वो घोल बना के रख लिया, और जितना उस प्याली में दूध लिया उतना ही ये घोल लेना है, उससे कम नहीं लेना, हाँ बराबर बराबर मात्रा में। अगर दूध आपने दो चम्मच के आसपास लिया तो दो चम्मच के आसपास ही ये लेना है, और उसको फिर ऐसे आप हिलाओगे और फिर देखोगे कि अगर ये दही की तरह जम जाता है तभी की तभी 20 सेकंड में, तो यानी कि थनेला रोग है। अगर वैसा ही रहता है तो उसका मतलब नहीं है
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, अब जब हमने पता चल गया कि इसमें थनेला के थोड़े से चीचड़े से दिख गए हैं या थोड़ा सा दही सा उसमें जम गया है, तो उसके बाद इसका पूरी तरह से जांच हो जाए भाई कौन सा जीवाणु इसमें है, तो उसके लिए फिर क्या तरीका रहेगा, कैसे जांच करवाऊँ इसकी?
1: जी, तो इसकी जांच के लिए आपको सबसे पहले तो इसका दूध का सैंपल लेना चाहिए, और कोई पोले क्लिनिक है या आपके कोई नियर बाय यूनिवर्सिटी है, जैसे हिसार में लूवास है, रोहतक में है, पोले क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप अपना सैंपल का टेस्ट करवा सकते हो। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक इस
0: जीवाणु
1: जीवाणु
0: के लिए
1: संक्रमण के अगेंस्ट काम करेगी।
0: डॉक्टर साहब के तरीका क्या रहेगा उसका,
1: तो उसका
0: नमूना
1: तरीका
0: लेने का?
1: यही, हाँ जी, इसके लिए ऐसा करना है कि आपको ना, किसान भाई ज़्यादातर हमारी लेबोरेटरी में भी जब सैंपल लेकर आते हैं, कई हमेशा मतलब गलत तरीके से लेकर आते हैं, वो किसी भी
0: जी
1: बोतल में ले आते हैं, तो
0: जी
1: फिर हम
0: जी
1: कहते हैं कि ये सैंपल नहीं चलेगा आपका,
0: जी
1: आपको साफ़ सुथरी सिरिंज में लाना पड़ेगा। मार्केट से 4 सिरिंज खरीद लें,
0: इंजेक्शन जो
1: इंजेक्शन
0: लगाने के
1: सिरिंजेस,
0: होते
1: हाँ
0: हैं
1: जी,
0: जो,
1: हाँ जी,
0: अच्छा
1: और उस सिरिंज के अंदर कुछ धार, पहली कुछ धार छोड़ के 5 ml के आसपास दूध उसमें डाल ले उसको।
0: जो सिरिंज लेंगे, जो
1: हाँ
0: हम
1: जी,
0: इंजेक्शन लेंगे वो
1: जी
0: 5 मिलीलीटर वाला लिया हुआ है,
1: हाँ, 5 ml वाला या 10 ml वाला,
0: दस
1: हाँ
0: दस
1: जी,
0: मिलीलीटर का एक वो है,
1: हाँ
0: वो
1: जी,
0: खाली जो इंजेक्शन होता है जो पशुओं को भी लगता है और आदमी
1: सिरिंज
0: को भी
1: लें,
0: लगता
1: सिरिंज
0: है,
1: लेनी है आपको,
0: सिरिंज
1: सिरिंज,
0: लानी है, नई लेके आनी है, वो
1: हाँ जी। और फिर
0: पुरानी ना
1: हाँ
0: ना
1: जी,
0: लेवे।
1: इसका पर्पस क्या रहेगा सिरिंज का, कि यानी कि वो साफ़ सुथरी है, उसमें कोई भी वो नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है, क्योंकि
0: कोई
1: हम,
0: जीवाणु उसमें
1: हाँ
0: नहीं
1: जी, क्योंकि
0: होता
1: हमें लैब में टेस्ट लगाना है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी,
0: जी।
1: तो हमें मतलब बिल्कुल वो स्टराइल चाहिए, उसमें कोई भी जीवाणु नहीं होना चाहिए। तो आप 4 सिरिंज ले लें, और
0: जी
1: उसमें थन का वो भी लिख लें कि अगला, पिछड़ा, इस टाइप में जो है, आगे का राइट है, आगे का लेफ्ट है, ऐसे करके मार्किंग कर ले चारों चारों सिरिंजेस में, और फिर उसको जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी में पहुंचवाएं और इसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जांच कराएं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ये रेजिस्टेंट आती हैं एंटीबायोटिक से, तो कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए टेस्ट जरूर करवाएं
0: यानी कि ये
1: सेंसिटिविटी
0: नहीं
1: का।
0: है कि हर दवाई हर एक जीवाणु पर काम
1: जी
0: कर जाएगी, उसकी
1: जी
0: हर एक ही अलग है और उसकी पहचान के
1: जी
0: लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है।
1: जी नहीं तो ये दीर्घकालीन स्थिर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक फॉर्म
0: अच्छा
1: में हो जाएगा, कुछ ठीक होगा, कुछ ऐसे ही रह जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे लेवटी को बिल्कुल सख्त कर देगा, और दूध की जो कोशिकाएं हैं उनको ख़त्म कर देता है फिर।
0: जी डॉक्टर साहब, इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो कितने टाइम में मिल जाएगा?
1: जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट
0: जी
1: दे रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: देखो ज़्यादातर तो ये हम 5 दिन की रिकमेंड करते हैं, 3 से लेके 5 दिन की एंटीबायोटिक कहते हैं कि इसमें आपका थनेला रोग ठीक हो जाएगा, कई बार नहीं भी ठीक होता, तो उसको कहते हैं हम एक्सटेंडेड थेरेपी, उसको हम 7 दिन तक ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो हमारे इंडिया में इतना किसान भाइयों को पता ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है इस चीज़ के लिए, कि जो शुष्क काल अवस्था होती है, जब भैंस दूध से टलती है पहली बारी, जब टल जाती है ना दूध से,
0: जी
1: उस दौरान आपको एंटीबायोटिक इसके चारों थनों में चढ़ानी होती है, उसको हम कहते हैं ड्राई पीरियड थेरेपी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो थनेला रोग होता है ना, वो इसी अवस्था में होता है, जब वो शुष्क काल में आती है
0: जी
1: भैंस या गाय, उसी दौरान होता है, क्योंकि उस समय उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो जो उसके अंदर नई इन्फेक्शन चली जाती है शुष्क काल के दौरान, और शुष्क काल में अगर आप उसको ड्राई थेरेपी ट्रीटमेंट देंगे ना, तो उससे जो उसके पहले की जो थनेला रोग आया हुआ है वो भी उस दौरान ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान दूध तो निकाल नहीं रहे आप, और
0: जी
1: वो थनों में लॉन्ग एक्टिंग होती है ये, बहुत मतलब पूरा उसका थन की लेफ्टी को बिल्कुल ठीक कर देती है, इसलिए ड्राई थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। और ये दो तरह के सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, एक जैसे है सेफ्टियोफर, एक है सिफेलोनियम, ये आप चारों थनों में जब आखिरी बारी दूध निकालते हैं, पूरी अच्छी तरह से दूध निकाल के वेटनेरियन की हेल्प से चारों सिरिंज थनों में, एक एक सिरिंज जो है, एक एक सिरिंज है जो वो चढ़ाना है, और ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से अल्कोहल से पहले साफ़ करके उसके साथ ही मिलता है, नहीं तो फिर वो कहीं संक्रमण अंदर ना चला जाए। इसलिए शुष्क काल में जो थनेला रोग उसके अंदर पनप रहा है या नया इन्फेक्शन हुआ है, और जैसे ही वो ब्याएगी ना, तो उसमें एकदम वो क्लिनिकल फॉर्म में आ जाएगी, तो किसान कहता है कि जी मेरी भैंस अभी ब्याई है, 10-15 दिन हुए हैं और उसमें थनेला रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जी कैसे ये हो गया, ये असल में ये थनेला रोग उसके शुष्क काल के दौरान था, और तब वो सब क्लिनिकल फॉर्म में था, अलाक्षणिक में था, और अब वो लाक्षणिक में चला गया है।
0: यानी कहने का मतलब ये है कि जब पशु दूध देता हो तब ही देखभाल नहीं, जब वो दूध देना बंद कर दे उसके बाद भी हमने देखभाल करनी
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल,
0: उसमें जिस तरह आपने बताया कि अगर दवाई इसमें चढ़वा ले हैं तो तो आगे जो समस्या आने की संभावना थी वो खत्म हो
1: ये जाती है। बेस्ट है, हमने भी अपने शोध से भी पाया है ये कि जो थनेला रोग पे हमने ये शुष्काल का शोध जो किया था उसमें ये लिखा था, देखा था कि 84% क्योर रेट आता है इसमें ड्राई थेरेपी से, और जो जिसमें हमने नहीं दी थी ड्राई थेरेपी उसमें सिर्फ 23% ही 23% ही क्योर रेट था। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जो शुष्काल में ना किसान भाई इसकी देखभाल करते नहीं है गाय भैंस की, वो ऐसी हल्का फुल्का चारा खिलाते हैं उसको कि चल ये तो अब दूध तो दे नहीं रही, तली हुई है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है ये, इस दौरान आपको इसके खान पान का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि क्योंकि यही पीरियड है जो आगे डिसाइड करेगा कि ये कितना दूध देगी, क्या ये आगे जल्दी होएगी कि नहीं, बच्चा कैसा इसका स्वस्थ पैदा होगा कि नहीं, थनेला रोग होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसका बॉडी कंडीशन स्कोर होता है, यानी कि हम भैंस को ना तो मोटा करें ज़्यादा ना ज़्यादा पतला रखें इस पीरियड में। इस पीरियड में हमें इसको एक विटामिन ए, ई और डी, इसका इसको हमें एक सप्लीमेंट इसका जो है इसको चारे के साथ ज़रूर देना है, क्योंकि अगर हम विटामिन ए, डी और ई का सप्लीमेंट देते हैं ना तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इससे ना आगे थनेला रोग नहीं होएगा जब ये ब्याएगी तो
0: जी।
1: और इसका खान पान का इसमें शुष्काल अवस्था में ये ध्यान रखना है आपको कि जब ये भैंस टलती है ना, जो भैंस 3 या 4 महीने पहले टल जाती है और गायें जो है ना दूध देती रहती है टलती नहीं है, तो किसान कहता है कि हाँ जी मार तो गायें दूध दे ही जा रही है टली नहीं रही है, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको दूध से टालना ही है उसको 2 महीने पहले, गायें हैं तो उसको 2 महीने पहले टालना ही है दूध से, और भैंस है तो वो अपने आप 3 महीने 4 महीने पहले टल जाती है। तो जैसे ही वो टलेगी तो शुरू में तो उसको आपको हरा चारा ज़्यादा खिलाना है, अगर हरा चारा अवेलेबल है तो 30 किलो हरा चारा ज़रूर खिलाएं और 2 किलो दाना मिश्रण, ज़्यादा हरा चारा खिलाना है। और जब ब्याने से 21 दिन पहले वो बिल्कुल खाना बंद कर देती है, कम कर देती है, काफ़ी कम कर देती है, क्योंकि उसका इतना वजन हो जाता है बच्चे का तो वो चारा बहुत कम हो जाता है उसका, तो उसमें हरा चारा कम कर दें 18 किलो और दाना मिश्रण बढ़ा दें 4 किलो। और ये जो मैंने आपको बताया विटामिन ए, ई, डी, ये ज़रूर खिलाएं उसको, और इसका इंजेक्शन भी मिलता है, वो इंजेक्शन भी आप इसको 21 दिन ब्याने से पहले लगाएं और ब्याने के बाद भी लगाएं, इससे बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, थनेला रोग भी नहीं होता, रिटेन्ड प्लेसेंटा भी नहीं होता, प्लेसेंटा भी ऐसे लटकता नहीं है और आगे की भी ठीक होती है, और वो
0: यानी जेर भी अच्छी तरह से
1: हाँ जी बचत आने में रोग भी नहीं आता। हाँ जी
0: जी। तो डॉक्टर साहब इसमें जिस तरह आपने बताया कि जो जब पशु टल जाए है यानी कि दूध देना बंद कर दे है तो उस समय हमने इसकी देखभाल ज़्यादा करनी है।
1: हाँ
0: अब डॉक्टर साहब जिस तरह गाय में आपने बताया कि काफ़ी लंबे समय तक दूध देती रहे, तो अगर पशु दूध देने लग रहा है तो फिर उसने किस तरह टाला यानी कि दूध किस तरह छुड़वाऊँ उसको?
1: जी हाँ जी, अगर पशु जैसे आखिर में जैसे वो कम देना शुरू कर देता है, 4-5 किलो देना शुरू कर देता है, इस टाइप में 3 किलो देना जाता है, तो आप उसको ये प्रैक्टिस करें कि ऑल्टरनेट डेज पे करवाएं, यानी कि एक दिन दूध निकाला फिर एक दिन छोड़ दिया फिर अगले दिन दूध निकाला, ऐसे करके धीरे धीरे, और थोड़ा सा वो दाना कम कर देते हैं इस टाइप में करके धीरे धीरे उसको टलाते हैं। हाँ जी।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें जिस तरह दूध निकालने का तरीका है कि उससे भी कोई असर पड़ता
1: जी
0: है?
1: हाँ जी, दूध निकालने के अलग अलग हैं, लोग अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि उसको ना फुल फीस्ट मेथड से करना है, यानी कि आपको मुट्ठी को पूरा ऐसे बंद करके थन को, थन से ऐसे दूध निकालना है, अपने जो जो ये हाँ जी अंगूठा है, अंगूठे का दबाव नहीं देना, अंगूठे के दबाव से क्या होता है जो टीट कैनाल होती है वो ख़राब हो जाती है, और टीट कैनाल ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो थन की नली है ना अंदर
0: जी, जी।
1: वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ख़राब होगी ना तो जीवाणु जो है वो एकदम से अंदर चले जाएंगे, थन के छिद्र जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी
0: जी। तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताया है कि पशु जितना हम ध्यान जब दूध देता हो उस टाइम रखते हैं, उससे ज़्यादा ध्यान हमने तब रखना है जब पशु टल जाए है यानी कि दूध देना बंद कर दे है। और जिस तरह आपने बताया कि साफ़ सफाई का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पशुओं में जो समस्या आने की है, थनेला रोग की जो समस्या है वो कम रहेगी, और देखभाल के हिसाब से, चारे के हिसाब से हम अगर प्रबंधन अपना ठीक रखेंगे तो अपने पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे और थनेला रोग जैसी बीमारियों से बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब अंत में एक बार और बोलना चाहूँगे कि क्या इसका कोई टीकाकरण भी होता है?
1: देखिए इसका थनेला रोग का टीकाकरण जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज में, जो बाहर विदेश में, तो जैसे जो पर्यावरण वाला थनेला रोग होता है उसके लिए है, लेकिन हमारे यहाँ पे भारत में तो अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, और सबसे बेस्ट
0: हाँ जी, लेकिन ये है कि अपना हम चारा दाना है वो ठीक रखें,
1: हाँ जी,
0: और स्वच्छता का साफ सफाई का ध्यान रखेंगे
1: जी,
0: तो इस बीमारी से बचा पाएंगे बड़े पशुओं को। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर सरिता यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: ये तो सुनी भैया ने बातचीत, काफ़ी समय हो रहा तो भैया ने रागनी सुनवाऊंगे, गायक कलाकार होंगे इसमें बलबीर शास्त्री और उनके साथी।

0: आई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार।
1: आकाशवाणी का यो रोहतक केंद्र है और ये भाई कार्यक्रम सुनेंगे आपकी पसंद, और आपकी पसंद की शुरुआत करेंगे भाई पल्ले राम दैया और साथिया की गायु रागनी के साथ। और इसने पसंद करने वाले श्रोता होंगे जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से श्रोता हैं सुरेश पहलवान, कृष्णपाल डबास, अनुज डबास, राजेंद्र डबास, अजय, नीटू डबास, विनोद डबास। और इसी रागनी ने पसंद करे हैं ग्राम काठा जिला बागपत उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र पाल, तेजपाल प्रमुख, राजेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह, सतवीर, विकास, विशाल। ग्राम गैसी उर्फ गादी से हैं बलदेव सिंह, आर्य, काशीराम दलाल, रामपाल दलाल, दयानंद और धर्मवीर दलाल, अर्पित, प्रियांशी, हरिओम शहरावत, ओमपाल शहरावत, सन्नी शहरावत, निमेश नैन, अनुज नैन और रिडकू कमल, अश्विनी चौधरी। और ग्राम कस्बा छपरौली बागपत से हैं जसवंत सिंह खोखर, राजकुमार, अनिल और सुनील कुमार, प्रवीण कुमार खोखर, सुमित कुमार, विनीत कुमार खोखर, सचिन खोखर, मोक्ष और तनुज खोखर। गांव डिकाणा बागपत उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल तोमर, राजकुमार और रोहित तोमर। और इसी रागनी ने भाइयों पसंद करे हैं लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया और लक्ष्मी देगी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, शंभु दयाल। और अगले श्रोता हैं गांव फ्रासी से राजकुमार डूडी, सरजीत प्रमोद, आशी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। तो सुने भाई अपनी ये पसंद।
2: अब किच्चक द्रौपदी को देख कर और बड़ा हैरान हो जाता है। द्रौपदी किच्चक को समझाती है, महाराज आपको सोचना चाहिए, परंतु किच्चक के दिल में तो यही बात थी, क्योंकि उसकी तरफ जोर जोर से घूर कर देखता हुआ वह उसको समझाती कि महाराज आपको सोचना चाहिए।

ਸੁਣੇ ਸੁੱਤ ਜਿਸਵੇਂ ਸੁਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਨ ਤੀਨ ਕਾਮਨੀ ਮਨਵਾਈ ਉਸ ਕੋਟ

ये तो सुनी भाई, नेपाली रामदई और साथियों गायु रागनी। अगली प्रस्तुति भाई सुनाओगे अजीत सिंह और साथियों गायु रागनी। पसंद करने वाले श्रोता इसमें रहोगे पट्टी मेर बड़ोत सिंह, रामानंद कश्यप, विमलेश, सचिन, ज्योति, पालेराम, आयुष, आर्यन, आदित्य, दादरी गेट भिवानी सिंह, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, लड़किरण मेहला और कुणाल मेहरा। इसी रागनी ने पसंद करे हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। अगले श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मिका विरक, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और लाल मस्जिद भिवानी से हैं संयम पोपले दर्शन और प्रवीण अमित और तुलसी, गीता, दीक्षा, निश्चित और राहुल रहेजा। तो सुनो भाई अपनी पसंद की ये रागनी।

ये तो सुनी बहन अजीत सिंह और साथियों की रागनी कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बहन सुनवाऊंगे रणबीर सिंह बड़वासनिया और नीलम चौधरी है अपनी पार्टी के साथ। पसंद करने वाले श्रोता इसमें होंगे वीरवान पन्ना भिवानी से हैं सुशील कुमार सोनी, पवन कुमार सोनी, भविष्या रानी, कमल सोनी, साहिल सोनी और प्रेम कला देवी, ओम प्रकाश सोनी, सुशील कुमार सावड़िया। अगले श्रोता हैं अलीका तहसील डबवाली से है रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरोजीत और रानी रोनू और रजनी। तो सुने भाई अपनी पसंद की ये रागनी।

ये तो बयान सुनी रणबीर सिंह और नीलम चौधरी थी अपनी पार्टी के साथ। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति बयान सुनवाओगे पसी नहीं रहा अपनी पार्टी के साथ। तो पसंद करने वाले श्रोता इसमें होंगे कस्बा बराड़ा जिला अम्बाड़ा से हैं रवि कुमार राहुल रणजीत कौर ज्योति आकृति और जय राहुल वीरेंद्र जय जान। और इसी राग ने पसंद करे हैं गाँव नीमड़ी जिला दादरी से हैं सुरेश कुमार अत्तर सिंह बलमत जगदीश कुमार और कृष्ण कुमार धर्मा नंबरदार और ताई घोगड़ी देवी और बोंद कला से हैं श्रोता गीसा सिंह। और इसी रागनी ने पसंद करे हैं गांव लुदेसर से हैं पप्पू राम घाट संतोष देवी लक्ष्मी देवी प्रियंका साक्षी रुचिका। अगले श्रोता हैं डबवाली से हैं जेके बाकोलिया श्रीमती सुनीता बाकोलिया संजय अनिल मीनू बाकोलिया। और अगले श्रोता हैं गांव जाखोद से हैं शंभु दयाल खटक बिमला देवी अमरजीत सुंदरपाल योगेश कुमार दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। और इसी रागनी ने पसंद करे हैं शिकारपुर यूपी से हैं बबली कुमार प्रजापति श्रीमती पुष्पा देवी डोली दीपांशु भीम अभिषेक। तो आप सुनो भाई अपनी ये पसंद है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपने दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। मेघ बरसते हैं सावन के, गिरते बूंदे तरवों से छनके, बिजली चमक रही है उरके घन में, दिन के तम में सपने जगते हैं मन के, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते हैं छू के भीतर, धाराओं पर धाराएं झरती हैं धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकित करती है ये रिमझिम।

ये खूबसूरत नगमा आपने सुना फिल्म मंजिल से, आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे थे योगेश ने और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। साथियों, जब बरसात होती है तो प्रकृति और भी खुशनुमा खूबसूरत नज़र आती है। सबसे खूबसूरत मौसम होता है ये बरसात का। आकाश काले बादलों से ढक जाता है, नदियाँ तालाब और कुएँ पानी से भर जाते हैं, पेड़ पौधे घास हरी भरी नज़र आती है। किसानों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि इससे फसलें बढ़ती हैं। बच्चों को पानी में कागज़ की नाव चलाना कितना अच्छा लगता है। मोर भी खुशी से नाचते हैं और मेंढक भी टर टर करते हैं। धरती के पानी का स्तर भी ऊपर होता है और मौसम, ये प्रकृति, सब कुछ बेहद सुंदर और तरोताज़ा नज़र आता है। आइए आपके पेश आपके लिए पेश करते हैं अब ये खूबसूरत नगमा।

ये गीत आपने सुना फिल्म शेरा शमशेरा से। आवाज़ें थी मोहम्मद अजीज और चांद रानी मुखर्जी की। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, बरसात की रिमझिम में एक ख्याल सा आता है, खुशनुमा बिताया हर लम्हा फिर याद आता है।

ये मधुर नगमा आपने सुना फिल्म मोहरा से। आवाज़ें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था वीजू शाह ने। साथियों, ये बारिश कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सभी बेचैनियाँ दुख दर्द धोकर ले गई है। जब बारिश होती है तो लगता है जैसे एक साथ कई आशीर्वाद आते हैं और यादें आती हैं। बारिश का दिन आराम से रहने का एक अच्छा बहाना भी देता है और कभी कभी तो बारिश आत्मा के लिए एक बेहतरीन संगीत सा नज़र आती है।

0: ये गीत आपने सुना फिल्म मजबूर से, आवाज़ें थी मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसान

0: कंपनी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ये गीत आपने सुना फिल्म बरसात से, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और सखियों की, गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। साथियों, बरसात बहुत ही खूबसूरत भी लगती है, लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि सेहत और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाए। जैसे कि पानी के इस मौसम में दूषित होने का खतरा सबसे अधिक रहता है, इसीलिए हमेशा उबला हुआ और शुद्ध पानी ही पिए। और साथियों, स्ट्रीट फूड, खुले में रखे फल या जूस पीने से भी हमें बचना चाहिए, इनसे फूड पॉइजनिंग और पेट के संक्रमण का खतरा रहता है। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि कूलरों, गमलों या खाली बर्तनों में पानी इकट्ठा न होने दें। डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से बचने के लिए पूरा प्रयास करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और साफ सफाई रखें। साथ ही बारिश में भीगने के बाद देर तक गीले कपड़ों में न रहें, इससे फंगल इन्फेक्शन भी फैल सकता है। और पैरों को साफ और सूखा रखें, गीले जूते मोजे पहनने से पैरों में फंगस का खतरा
1: है। पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा।

और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे, तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा

आया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही

लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेट्टी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेट्टी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4th दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए

0: त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का नमस्कार। साथियों, मौसम खुशनुमा हो तो खुश रहना भी लाजमी है और खुश रहने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो यही है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, न कभी भविष्य में जिए और न ही कभी भूतकाल में जिए, और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। साथ ही नियमित व्यायाम करें, भरपूर नींद लिए और अपनों के साथ समय बिताना भी आपके मूड को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाता है और आपके इस पल को खूबसूरत बनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे फिल्म करीब से, आवाज़ें थी कुमार सानू और संजीवनी की, शब्द रचना राहत इंदौरी की थी और संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। साथियों, मन को तरोताज़ा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रकृति के साथ समय बिताएं। जब भी मौका मिले हरे भरे स्थानों और खुली हवा में कुछ समय ज़रूर बिताएं। साथ ही अपने शौक को भी पूरा करें, पेंटिंग करना, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, ऐसी अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए हमेशा कुछ समय ज़रूर निकालें। और एक और बात अहम है कि हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको ऊर्जावान रखें। और अब आपको ऊर्जावान रखने के लिए हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: பார்த்து சச்சியை.
1: हरिहरन और स्वरलता की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म बिच्छू से, और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है गुमशुदा की तलाश हेतु एक आवश्यक सूचना। गुमशुदा लड़के का नाम है विशाल, जो हिसार बायपास रोहतक से लापता है। गुमशुदा का हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ, लंबूतरा चेहरा, दुबला पतला शरीर, जिसके दाहिने हाथ पर उसकी बेटी दीपांशी का नाम लिखा हुआ है, कद 5 फुट 8 इंच, फिरोजी रंग की शर्ट और नीले रंग का लोवर पहनी हुए है।

पैरों में हवाई चप्पल हैं। ये पांचवी पास है और विशाल की उम्र 29 वर्ष है। जिस किसी को विशाल की सूचना प्राप्त हो वो थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं हंसराज हंस।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आवाज थी हंसराज हंस की। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध

0: स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी

0: की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुनावे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश

0: सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।

आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये गीत आपने सुना फिल्म अभिमान से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत दिया था एसडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे मजरूह ने। साथियों, ये फिल्म ये उजागर करती है कि पेशेवर सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जीवन की भावनात्मक और पारिवारिक खुशियां होती हैं, इसीलिए अहंकार से सदा दूर रहें।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। हमारी आज की फिल्म का नाम था अभिमान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन

0: रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल्स जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं DAVPG कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का

0: जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं।
0: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनामो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं और उस एनर्जी का उपयोग करके, जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशंस भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहाँ पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलके वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों हैं।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं, कम इस सेंस में है कि ये है धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है, जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है, तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट एलिमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है, तो ND जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो ND

0: वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय कि ये जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्यूमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं?
0: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी एबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज हैं उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और आईवीएफ तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से आईवीएफ तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो आईवीएफ है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपियरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैन्युपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब 0 डे है, और फिर स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों, IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति

0: कहती हैं।
1: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे 5 दिन में 2 बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती हैं। देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते, तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं rather than जिसमें वो चीज absent है, तो फिर वो negate हो जाता है, negatively out हो जाता है, exit हो जाता है बच्चा, तो इस sense में जो chances हैं, attempts हैं IVF के, वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा and success का chance बढ़ जाएगा। Then AI system of witnessing आ गया, तो मतलब आजकल labs में AI witnessing हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर 4 मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है, ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
0: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है, लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है, जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने, और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता, तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया, आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण, इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जिसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं, इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहां पर है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो है वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना, इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-स्ट्राइप ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-स्ट्राइप ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
0: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
3: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है, हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी

0: हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
0: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़ें, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के। तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी DC प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक DNA की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार CD जैसा मॉडल तैयार किया था। DNA के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरिफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोताओं, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned today and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying it is not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said from day one he took full responsibility and never turned away from the situation. He said the NEET-UG results declared on July 16th were satisfactory, with many meritorious students from underprivileged backgrounds achieving success. He said, however, even during this time, individuals holding responsible positions attempted to create obstacles and misled students, calling it an act that caused him deep anguish. The CJP has withdrawn its protest after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, at a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said during the meeting the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs

0: terms will be executed within the agreed-upon timelines. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President Draupadi Murmu has concluded her state visit to Romania and departed for New Delhi this afternoon. Romania was the final leg of the president's three-nation state visit, which also included Moldova and North Macedonia. On the final leg of her visit to Romania, the president held wide-ranging discussions with her Romanian counterpart, President Nicosor Dan, aimed at strengthening bilateral cooperation across trade, investment, defence, digital technology, education, renewable energy and culture. She noted that cooperation between India and Romania has expanded across a wide range of sectors. President Murmu also met Romania's Prime Minister and parliamentary leaders, addressed the India-Romania Business Forum, and interacted with members of the Indian community. The ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. It was officially inscribed during the 48th session of the World Heritage Committee at Busan in South Korea today. It marks India's 45th property to join the prestigious Global Heritage List. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 90 runs in the second T20 international of the three-match series in Harare. With this win, the men in blue have registered an unassailable 2-0 lead in the series. This also marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना सीरिया में दो बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत ईरान ने लगातार 13 रात अमरीकी हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई में विराम की घोषणा की दक्षिणी चीन में तूफान नोल का अलर्ट जारी हांगकांग ने दर्जनों उड़ानें रद्द की उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर दान के साथ व्यापार निवेश रक्षा डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के प्रधानमंत्री और संसदीय नेताओं से भी मुलाकात की उन्होंने भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय कंपनी रोमानिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है
2: डिफेंस रिन्यूएबल एनर्जी डिजिटल टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च हेल्थ केयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एआई इनोवेशन तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक नया नया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के व्यापक अवसर उपलब्ध है मुझे ये देखकर प्रसन्नता है कि भारतीय कंपनीज और भारतीय प्रोफेशनल्स रोमानिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं
1: बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स रिसर्चर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा

0: विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: सीरिया में आज राजधानी दमिश्क को पूर्वी प्रांत दीर अल-ज़ोर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर दो बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेगिस्तानी राजमार्ग पर एक नागरिक बस और गृह मंत्रालय की बस के बीच हुई टक्कर में लगभग 30 लोग घायल हुए। सेना के हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर बचाव अभियान में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जाँच जारी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की ओर से आज रात भर तीव्र सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है। ये लगातार 13 रातों से जारी अमेरिकी हमलों में विराम का संकेत है। हालांकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव बढ़ने के बाद क्षेत्रीय अस्थिरता अब भी गंभीर बनी हुई है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमानपुर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सैन्य कार्रवाई में विराम की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण रात गुजरी। इस बीच अमरीकी केंद्रीय कमान ने तत्काल परिचालन विराम की घोषणा नहीं की, जिससे पिछले 13 दिनों से चल रही उसकी नियमित आक्रामक कार्रवाई की घोषणा का क्रम टूट गया। इस बीच ईरानी क्षेत्र में रात भर शांति रहने के बावजूद पड़ोसी खाड़ी देशों में सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी रही। सऊदी अरब के अधिकारियों ने लाल सागर के यानबू और जिजान प्रांतों में चेतावनी सायरन सक्रिय कर दिए, जो तेल अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ईरान ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मुद्दे पर उसके अधिकारियों पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की आलोचना की। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये टिप्पणी की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान नोल दक्षिणी चीन और हांगकांग में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ दस्तक दे रहा है। इसके चलते पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गईं। हांगकांग मौसम कार्यालय के अनुसार नोल 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दक्षिणी चीन सागर के आगे बढ़ रहा है और पूर्वी ग्वांगडोंग के तट के करीब पहुंच रहा है। मानवाधिकार समूह बलूच वुमेन फोरम ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जबरन गुमशुदगी की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। फोरम ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा कथित तौर पर की जा रही महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की बढ़ती जबरन गुमशुदगी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मानवाधिकार समूह ने चेतावनी दी है कि ये प्रथा 21वीं सदी के सबसे चिंताजनक मानवाधिकार मुद्दों में से एक बन गई है। ये टिप्पणी 21 जुलाई को बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के किल्ली कोंगर इलाके में हुई घटना के बाद आई है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने एक मकान पर छापा मारा और परिवार के 6 सदस्यों का अपहरण कर लिया। फोरम ने प्रांत भर में जबरन गुमशुदगी की बढ़ती घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि कई परिवार वर्षों से अपने प्रियजनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और कई पीड़ित अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा करते करते जान गंवा चुके हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों को विशेष सुरक्षा के योग्य वर्ग के रूप में मान्यता देता है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: यमन के हुती विद्रोहियों ने आज कहा कि उसने दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब के जिजान में औद्योगिक सुविधाएं पर मिसाइल हमले किए हैं। समूह का कहना है कि कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा यमन के बंदरगाह शहर अल हुदैदा पर किए गए हमलों के जवाब में की गई थी। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का एक चिरस्थायी प्रेरक है, जो भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धा

0: श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रांड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस

0: कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। अनहद सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकेया सलेम से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। सीरिया में दो बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत। ईरान ने लगातार 13 रात अमरीकी हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई में विराम की घोषणा की। दक्षिणी चीन में तूफान नोल का अलर्ट जारी। हांगकांग ने दर्जनों उड़ानें रद्द की। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अमृत भूषण विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu concludes her three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. At least 35 people killed after two buses collide in Syria. Iran reports a pause in military action after 13 consecutive nights of American strikes. Southern China on alert for Typhoon Naul. Hong Kong cancels dozens of flights. Ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh added to UNESCO World Heritage List. And in cricket, India beat hosts Zimbabwe in second T20 international by 90 runs in Harare, take unassailable 2-0 lead in three-match series. President Draupadi Murmu has concluded her state visit to Romania and departed for New Delhi this afternoon. Romania was the final leg of the president's three-nation state visit, which also included Moldova and North Macedonia. On the final leg of her visit to Romania, the president held wide-ranging discussions with her Romanian counterpart, President Nicușor Dan, aimed at strengthening bilateral cooperation across trade, investment, defense, digital technology, education, renewable energy and culture. President Murmu also met Romania's Prime Minister and parliamentary leaders, addressed the India-Romania Business Forum and interacted with members of the Indian community. President Draupadi Murmu lauded the contribution of Indian community in Romania, describing them as a vital pillar of the growing partnership between the two countries. Addressing a reception hosted for the Indian community in Bucharest on the concluding day of her state visit to Romania, the president said that Indians living abroad continue to remain deeply connected to their motherland and make every Indian proud through their achievements and dedication.
3: भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी, रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was Dadra set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके

0: प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।